0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देश के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिकता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू निर्यात पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देश के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
1: बैठक के दौरान सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर विशेष सत्र आयोजित किया गया। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अस्थायी सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के कच्चे तेल का 14 सबसे आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भारतीय कंपनियों और यूएई की आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को

0: कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
1: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के अन्य सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच आबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत।
2: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिसरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडल बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई चलेगा, इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
3: सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की बहुविवाह उत्तराधिकार विभिन्न संबंध जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदाय को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीन के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में लाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
4: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्य तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बात के राज्य सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसान की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यही चेतावनी दी, यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमा पर अनावश्यक रूप से रोका या परीक्षण किया गया संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने का आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो करते हैं।
5: के लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
6: योजना नौजवानों लिए है, ताकि अब जब 60 साल के हुए आपको कभी किसी सहारे की जरूरत पड़े, आप अपना थापा भी गौरव के साथ जिता सको।
5: तो किस योजना से 8 करोड़ 85 लाख अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18-40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटी फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभाग में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2027 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए फैसला किया है।
7: खरीफ के लिए जो फसला लिया गया उसमें जितनी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या पैसे अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट आएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मीट्रिक टन।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी बीजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
8: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी बाही मचाई है। भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयाग

0: आज में 17, दोही जिले 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पुल गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और शिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। सूद का कार्यकाल 24 मई समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। दो दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, तवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ट्रिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
2: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा पहले आशा व्यक्त की है। इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय रही है। 2017 बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की
1: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली 60 गेंद में नाबाद 5 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक है। वे टी20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन ही पूरे कर लिए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीता। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कैकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneir.gov.in और हमारे newzoneir मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पीएम मंत्र, समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच, कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ तल्हा, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संहिता का समय, मोदी शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल। जनता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष बढ़कर 15%। इसी खबर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने कारों काफिले में कटौती कर इस उदाहरण किया कि वो जो कुछ और करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर पर सुर्खी दी।

0: है। सीबीआई ने मारे जगह छाप एनटीए मुख्यालय पहुंची एजेंसी, चार और गिरफ्तार, 40 लाख तक बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय शानदार विजय, समर्थन 144 और विरोध में 22 वोटें। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते लिखा है धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा। जनसंघ का कहना है प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार समाप्त। राजधान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार रक्षा करें। पत्र के अनुसार दी बनी केंद्र, भारत मंडप जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ लेकर तीनों निगम तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोक सत्य की सुर्खी है सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका से लिखा है अमूल ने बढ़ाए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पति अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विश्व मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस सितंबर तक चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आम्ही आकाशवाणी चंद्रपूर केंद्रावरून बोलत आहोत। सकाळचे ठीक 8:15 आहेत। प्रसारित करीत आहोत हिंदी चित्रपट संगीत।

ब्रेक के बाद आपको सुनवा रहे हैं हम आपके कौन फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर और राम लक्ष्मण की आवाजें हैं, देवली के बोल हैं और राम लक्ष्मण संगीत।

निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या आज जन्म दिवस है। जन्म दिवस पर उन्हें विनम्र नमन। उनके बैनर तले बनी फिल्मों में मैंने प्यार किया, प्रेम रतन धन पायो, हम आपके कौन, विवाह जैसी सुंदर सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों ने परिवारों के दिलों में विशेष स्थान बनाया। आज का आपको याद दिला दें कि आज के फनकार कार्यक्रम केंद्र है निर्माता निर्देशक राजकुमार जातिया पर। प्रेम रतन पायो फिल्म के गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें हैं मोहम्मद इरफान, धरन रावल और पलक मुजाल की।

इरशाद कामिल के बोल आपने सुने, हेमेश रेशमिया का संगीत था। ये गीत आप सुन रहे थे रत्न धन पायो फिल्म से।

अरन्नुम मत और मोहित चौहान आवाजों में ये गीत। फिल्म का नाम एक था टाइगर।

तरन्नुम मल्लिक मोहित चौहान की आवाजों में खटाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मनोज मुंशी ने इसको लिखा था। देश की सुरी धड़कन विद भारती समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में अब फिर वक्त है कि एक बहुत छोटा ब्रेक लिया जाए।

ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत और आपको सुनवा रहे हैं बॉर्डर टू फिल्म का ये गाना। विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की ये आवाज है।

विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की आवाज में इम्पोर्टेड फिल्म का गीत आप सुने थे। मनोज मुंतर ने इस गीत को लिखा था और विशाल मिश्रा का संगीत था। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रों। तो आपको याद दिला दें कि सुबह 6:45 पर और शाम 6:45 पर आप सुनते हैं संगीत सरिता कार्यक्रम। आज सुनिएगा श्रृंखला शाम 6:45 पर श्रृंखला एस लागीलन, कलाकार हैं गायक अनूप छोटा। इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी आज हम 7:45 पर इंद्रधनु के अंतर्गत इंद्र मिलिए कार्यक्रम आज सुनिए। इसके अंतर्गत गिटार वादक अनिकेत कुदेवार से जयंत पत्रिका की बातचीत सुनेगा भाग दूसरा का। आज प्रस्तुत करता है तेजस्वी कामले। अब चित्रलोक कार्यक्रम में ये गाना, ये वनवास फिल्म का गाना है। नाना पाटेकर, शान और मोंटी शर्मा की आवाज है।

0: वनवा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, नाना पाटेकर शान और मोहित शर्मा की आवाज़ें थी। सुनील का ये गीत लिखा था और मोहन शर्मा का संगीत था। त्रिलोक कर्म में अब सुनते हैं ये से।
1: जैसे कि जानते हैं विविध भारत हर महीने का है अपनी एक महफिल सृजन भारती। बार सृजन भारती करा रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है धन सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

बार बार देख फिल्म का गीत भी आप सुने थे अमर आशी और सारे की आवाज में जैस्लीन रॉयल का ये संगीत से गीत के साथ आज का त्रिलोक कार्यक्रम समाप्त करने दीजिए। इजाजत सविता सिंह को, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विद भारती। ये है विद भारती राष्ट्रीय स्वा देश की सुरीली धड़कन आज फनकार। ये कार्यक्रम होगा थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हंसियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसी बा ये गाना।
2: चित्तौड़ देखपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दिखती।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और जिसमें एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीनी तमन्ना है उन्हें का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप जाए तो मर जाए। गाते गाते आप दीवार से आती हूँ जब कर जाते। मैंने कहा कोटी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और हम भी कर गा भी रही हूँ, मुंह भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये क्या हो सकता है। बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैं, शुक्र है गिनी।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

खुचामन सी राजस्थान के जिला मुख्यालय में 14 मई 1942 को प्रसिद्ध निर्माता तारचंद बड़जात्या के यहाँ जन्मे राजकुमार बड़जात्या। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 1968 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में इन्होंने दाखिला लिया, लेकिन पिता के अनुरोध पर राजश्री प्रोडक्शंस में शामिल होने के लिए इन्होंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। राजश्री प्रोडक्शन एक फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी, स्थापना 1937 में हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से हिंदी फिल्म शामिल रही हैं। राजश्री प्रोडक्शन्स बैनर तले फिल्म में मनोरंजन

मनोरंजन की मांग को हमेशा ही पूरी करती रही हैं। फिल्मों के वितरण और प्रोडक्शन के कार्यों को पूरा सफलतापूर्वक अंजाम देना राजकुमार बड़ात्या ने आरंभ दिया था। एक निर्माता के रूप में 1994 से लेकर 2019 तक ये सही रहे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में पिया घर से लेकर मैं प्यार किया तक का सफर इन्होंने पा किया। सह निर्माता के रूप में 1979 की फिल्म नया से ये जुड़े।

राजकुमार बड़जात्या एक फिल्मकार रूप में प्रसिद्ध हैं। बड़जात्या परिवार का एक ऐसा सदस्य जिन्होंने फिल्म निर्माण और वितरण के अपने पारिवारिक व्यवसाय को बड़ी ही शिद्दत से निभाया। फिल्म निर्माण की अपनी विरासत में इन्होंने कई पारिवारिक मूल्यों के साथ ली हुई लोकप्रिय संगीतमय कलात्मक फिल्मों का निर्माण किया। एक फिल्मकार की संपत्ति और समाज में मान मर्यादा उनकी फिल्मों से ही पहचानी जाती है। राजकुमार बड़जात्या हिंदी सिनेमा जगत में बेहतरीन कथाओं, अभिनय, गीत संगीत माध्यम से आम और खास दर्शकों को उनके पसंदीदा विषयों की सार्थक फिल्में देने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। राजकुमार बड़जात्या से पहले 1972 की फिल्म पिता का घर जुड़े बासु चटर्जी की लिखी और निर्देशित फिल्म को प्रोड्यूस किया था तारण बड़जात्या ने।

राजश्री प्रोडक्शंस फिल्म सौदर, जिस निर्देशक थे सुधेंदु रॉय, नूतन, अमिताभ बच्चन, पद्मा खन्ना अभिनीत। इस फिल्म के राजकुमार बड़जात्या सहयोगी निर्माता थे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने तपस्या फिल्म काम किया, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म। इस फिल्म का निर्देशन अनिल गांगुली ने किया। निर्माता थे प्रचंड बड़जात्या। ये फिल्म अनुभवी बांग्ला उपन्यासकार आशापूर्णा देवी की कहानी पर आधारित थी। फिल्म राखी, परीक्षित साहनी, ललिता पवार ने मुख्य भूमिकाएं अदा की थी। संगीत रविंद्र जैन था। इस फिल्म ने 1976 वर्ष की संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही रखी। सन 1980 में इसी फिल्म को तेलुगु भाषा में भी बनाया गया। सन 1976 की जोश, 1980 की अरकहु, 1984 की सांश, 1989 की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया में राजकुमार बड़जात्या एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में रहे।

इस दौरान भी मई हम आपके हैं कौन HAH के यानी हम आपके हैं कौन राजकुमार जाति की एक निर्माण के रूप आई संगीत में रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसे इनके पुत्र सूरज बजात्या ने लिखा और निर्देशित किया।

और राष्ट्रीय प्रोडक्ट्स के बैनर पे इस निर्माण किया गया। माधुरी दीक्षित और सलमान खान अभिनीत 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई फिल्म वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। इसने फिल्म वितरण के नए तरीकों को अख्तियार कर साफ सुथरी कहानी के साथ भारतीय फिल्म उद्योग को हिंसक कहानी ली हुई फिल्मों के बीच बदलाव का एक सुकून भरा एहसास दिया। साथ ही साथ निर्माण और वितरण का तरीका बदला। इसने राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, अन्य अवार्ड्स में इस फिल्म की

एच ए एच के बाद 1999 में आई निर्माता राजकुमार बड़जात्या की हम साथ साथ हैं, अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या, अब परिवार के सदस्यों का राजकुमार बड़जात्या ने इस फिल्म का निर्माण किया। कहानी और निर्देशन सूरज बड़जात्या का। ये फिल्म भी वर्ष की सबसे अधिक कमाई कर वाली और जग की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। समीक्षकों ने भी इसे खूब सराहा। ये फिल्म टोरंटो में 6 स्क्रीन पर कनाडा के सिनेमा घर में प्रदर्शित होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म थी। वैसे ये फिल्म अपनी निर्धारित प्रदर्शन तिथि से पहले रिलीज हो जाती, पर संगीतकार राम लक्ष्मण ने साउंड ट्रैक एल्बम की जांच के लिए समय दिया। पोस्ट प्रोडक्शन, सिनेमेटोग्राफी, कोरियोग्राफी के साथ साथ अन्य सगाम पूरे होने के बाद आखिरकार 5 नवंबर 1999 को स्क्रीन पर ये फिल्म आई और छा गई।

बैठे, जो हंसराज और टीम राणा फिल्म में मुख्य कलाकार थे। 2003 की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ तो चोर पर आधारित फिल्म थी और इसमें के कलाकार थे ऋतिक रोशन, करीना कपूर और अभिषेक बच्चन। राशि प्रोडक्शंस की इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था यशराज फिल्म ने।

राजकुमार जातिया द्वारा निर्मित सन 2006 में फिल्म आई विवाह, मुख्य कलाकार थे शाहिद कपूर और अमृताव, रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसमें सगाई से कर शादी तक के सफर की कहानी को बखूबी प्रदर्शित किया गया था।

विवाह ऐसा भी नाम की फिल्म लहराए राजकुमार बड़जात्या साल 2008 में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी ईशा कोकर, सोनू सूद और आलोक नाथ ने। फिल्म आशा देवी कहानी आधारित

हम राजकुमार बड़जरिया द्वारा निर्मित फिल्म का जिक्र कर रहे हैं। 2010 में इन्होंने फिल्म बनाई इस लाइफ में, 2011 में लव यू मिस्टर कलाकार। ये फिल्म राजकुमार बड़जरिया की अन्य फिल्मों की तरह लोकप्रिय नहीं हुई।

क्रम में 2018 में सचिन पिलावकर के निर्देशन में राष्ट्रीय फिल्म की प्रसिद्ध फिल्म अखियों के झरोखों से की सीक्वल आई जना पहचाना, जिसमें सचिन और अंजिता ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। फिल्म भी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिर 2015 में आई राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म, ये फिल्म उस वर्ष की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। प्रेम रतन द्वारा

सलमान खान, सोनम कपूर, नील नितिन मुकेश अभिनीत ये फिल्म दर्शकों के मापदंड पर खरी उतरी। 2019 में एक माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या अपनी आखिरी फिल्म लेकर आए हम चार। अभिषेक दीक्षित लिखित और निर्देशित इस फिल्म में चार नए हीरो को पेश किया गया था। ये राज प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड की 58वीं फिल्म थी।

0: कुमार बरजात्या का 21 फरवरी 2019 को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। एक माता के रूप में राजकुमार बरजात्या ने पारिवारिक फिल्मों की अपने परिवार की परंपरा का निर्वहन करते हुए भारतीय दर्शकों के लिए अपनी जमीन से जुड़ी हुई कहानियों को, भावनाओं को, रिश्तों को बड़े ही जतन और प्यार से सिनेमा के पर्दे पर दर्शित किया। इनकी फिल्में भारतीय सिनेमा इतिहास में बेहतरीन कथानकों और प्रस्तुतिकरण के लिए हमेशा ही चीन जाएंगी। और जैसे दर्शक इन फिल्मों को देखेंगे, राजकुमार जी कथा शैली और निर्माण कला के मुरीद हुए ना नहीं रह सकेंगे। आज के फिल्मकार ये कर केंद्रित था फिल्म माता राजकुमार बरजात्या पर। आलेख और सर जी श्याम का और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतता थी तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का संगीता दौर ले कायम है संगीत की मध पाठशाला। रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता विद भारती पर।
1: पति के पास है बेमिसाल हस्तियों का मूल खजाना। सुनिए ऐसे बना ये गाना।
2: मेहदी साहब का यहाँ पे एक दौर आया तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
1: लक्ष्मी का प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल
2: तो देखिए उसका तरह है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा। लेकिन मेहंदी हसन साहब के खास उठंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने कहा
1: ऐसी अमूल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।
3: एक्शन मेगा हर फेम दोन हरिणवर पणकतात आकाशवाणी चंद्रपूर केंद्राचं प्रसारण सकाळी 10:10 प्रसारित आहोत हिंदी चित्र संगीत।
4: वर्ग 11वी BA BCOM आणि BSc करता प्रवेश देणे सुरू आहे। आज संपर्क करा डॉक्टर खत्री महाविद्यालय कोम चंद्रपूर थे।
3: श्रुतीहो कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला ऐकत आहोत श्रेया घोषाल गायलेलं विवाह या चित्रपटातील हे गीत।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: नमस्कार कौन है?
1: बना वेले जिला सागर मध्य प्रदेश।
0: अच्छा सागर मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं।
1: हाँ सर कैसे हो आप?
0: हम अच्छे हैं, बोलिए आप कैसे हैं?
1: गर्मी का आनंद ले, गर्मी
0: पड़ा है। सही बात है, गर्मी का भी आनंद सही आनंद लेना चाहिए, सुख मिल जाता है कम से कम मन को थोड़ा सा। आप कब से रेडियो सुन रहे हैं?
1: हमें तो कम से कम 30 वर्ष हो गए हैं, मगर क्या है अभी मोबाइल ऐप पे आया है तो जब से सुनने लगे।
0: अच्छा भाई आपने नाम क्या बताया?
1: लक्ष्मण रेखवा जिला सर।
0: लक्ष्मण जी आप हिंदी गाने सुनते हैं?
1: हाँ हिंदी सुनते हैं सर।
0: और आज का जो प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम का आपने आज फोन किया है, ये हाँ। प्रोग्राम है मराठी गीतों का, तो मराठी गीतों की भी चाहत होगी आपकी कभी?
1: हाँ, मराठी सुनवाना, कोई भी गीत सुना देना मराठी।
0: नहीं आप बताइए कौन सा गीत आपके में बसा है, कोई मराठी गीत लता जी का हो, आशा जी का हो, रफी साहब का हो।
1: लता जी आवाज में कोई सुनवा देना
0: जी। ठीक है, और आपके दोस्त साथी होंगे, उनके नाम अगर बताना चाहे तो?
1: हमारे दोस्त रहेंगे गजर लोधी है, मांगीला चंदेल, बसंती लाल सुरवंती है, बिन कटारे हैं, जिसके सवारी हमें सवारी दोस्त जी रोडी रेडियो से जुड़े रहते हैं।
0: अच्छा जी, आपका पसंदीदा गीत आपको सुनवा रहे हैं।
1: ठीक है नमस्कार।
0: सुनिएगा नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।
1: आकाशवाणी चंद्रपुर केंद्र मुंबई ग्रहण प्रसारण कार्यक्रम जय केंद्र सहक्ष केला। यानंतर विविध भारतीय प्रसारण सेवेचे कार्यक्रम मुंबई केंद्र सहक्षेपित करीत होते।

पर स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं आपके साथ विधि जैन और आज की इबारत मैं आप सबके साथ पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि हमें कुछ श्रोताओं ने इस इबारत को ना पढ़ा क्योंकि वो फेसबुक पर हो। तो चलिए चलते हैं उस इबारत की ओर की हमने जो इबारत आपको भेजी है ऐसी है कि वो हमारी मोहब्बत बारे में पूछ रहे थे और हमने कहा कि डॉन पकड़ में नहीं आता। तभी उसी ने मुस्कुरा कर कहा, आपके पैर बहुत हसीन है। मुझे ऐसा हुआ कि मोहब्बत में तारे भी एक कला होती है, लेकिन मोहब्बत की दुनिया इतनी सी कहाँ है। कब तो ये चाऊसी है, हार कट जाता, कभी दिल को भी चोट लगती है। कई बार लोग पूछते हैं कि कितने आने मिले और कितने पराए, या कहूँ कि जिंदगी की भीड़ में जब लोग पूछते हैं कितने आदमी थे, तब अपने हौसले गिनकर बता देती हूँ। और भी जीवन में लोग नहीं मिलते और देते हैं तारीख पे तारीख, पर हम तो हाल में खुश हैं। मुस्कुरा कहते हैं कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं भीड़ लग जाती है, जीते जाते हैं डर लगता है मृत्यु से। तो मन कहता है, बाबू मुशाई जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लम तो रस्सी में अपनों की याद में आंसू बहने देते, क्योंकि कोई ये ना कह दे कि सुनो आई टीयर्स जीवन की बड़ा भी बात है, क्योंकि पिक्चर खत्म हुई अभी तो ये जो पिक्चर वो शुरू हो गई है। बहुत सारे संदेश हमारे पास आ चुके हैं और कई लोग संदेश भेज रहे हैं, उसकी कतार बड़ी है, बड़ी लंबी सी कतार हमारे बीच में है। तो हमारे जो श्रोताओं ने बहुत सारे गाने भी चुने हैं और सच बताऊं तो कई गीत से हैं जो हमारी प्लेलिस्ट से जो हमने बनाई है आपके लिए से मिल रहे हैं। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज की बारे में कई फिल्म के डायलॉग शामिल हैं, अब ऐसे दृश्यों जो कलाकार दिख रहे हैं उन पर गीत होंगे, या डायलॉग इबारत को पूरा करने के उद्देश्य से डाला गया है, या इन डायलॉग्स में जो शब्द है उनको आधार बनाकर गीतों को प्रस्तुत होगा। अब बात वो समझ नहीं पा रहे, उनका कहना है कि मैं देखेंगे, कोई बात नहीं। पर हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज उस नए तरीके से आपने विचार व्यक्त किए हैं, फिर शायद गीतों का असर लगता है और साथ साथ चलेगा तो क्या होता है। देखिए सच्ची मोहब्बत को व्यक्त करने की बहुत अच्छी बात लिखी है कि सच्ची मोहब्बत को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती, पर वह तो अनुभव करना होता है। जन में नमक की तरह दिखाई नहीं देता पर होता है। कितनी बढ़िया गंभीर बात हमारे श्रोता ने लिखी है। और हमारे श्रोता ने एक और श्रोता ने बात लिखी, आज की बार केवल फिल्मी संवादों का संग्रह नहीं है बल्कि सिनेमा चश्मे से जीवन को देखने का एक खूबसूरत नजरिया है। याद दिलाता कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, इंसान को अपने हौसले बंद रखने चाहिए, क्योंकि जीवन की कहानी का सुखांत तो होना अभी बाकी है। बिल्कुल सही हमारे श्रोता का है, आज भारत में कई फिल्मों के डायलॉग शामिल किया, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिन फिल्मों के लोग शामिल किए गए हैं उन्हीं फिल्मों के गाने शायद बच सकते हैं। बिल्कुल सही पहचाना है, मैंने जिन फिल्मों के संवादों को पहचाना है उनके नाम है दो बदन, डॉन, पाकीज़ा, वक्त, शोएब आमिनी, अली अमर, प्रेम जान, मेरे महबूब, हो सकता है और भी कुछ फिल्मों के डायलॉग हो, मुझे याद नहीं आया। बिल्कुल सही, जितना आपने पहचाना उतना अच्छा। कितनी बढ़िया थी कि आप पहचानने का प्रयास करें। हमारे शो लिखते हैं आज की इबारत पर यह शब्द हो सकते हैं मोहब्बत, डॉन, सीन, पैर, तार, बहुत सारे शब्दों का उन्होंने जिक्र किया है। और वो लिखते हैं कि मोहब्बत की तारीफों का अजीब असर होता है, कभी मुस्कान दे जाती है, कभी दिल भी असर होता है, कुछ बात आंखों तक आकर ठहर जाते हैं और कुछ आंसू बनकर बिना बही दिल में उतर जाते हैं। जाने क्यों मोहब्बत क्या करते हैं, यही बात है क्यों करते हैं पता नहीं। पर हमारे श्रोता लिखते हैं भारत के अनुरूप भावित गाने हैं, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, उन्होंने कई सारे गानों के बारे लिखा है। तो चलिए हम देखें इनमें से क्या हो सकता है। हाँ आपने एक बात बहुत अच्छी पकड़ी, हमारे एक श्रोता ने तो 15-20 गाने भेज दिए हैं चुनकर, कितनी बढ़िया बात है ना, कितनी मेहनत की होगी, उसके लिए आपको धन्यवाद। हमारे श्रोता कहते हैं हम यहाँ से खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है, डॉन पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन है, आज इबादत में इबारत में मुझे फिल्म डॉन फिल्म नजर आ रही है। अच्छा आप पसंद आपने वो बता दी, बहुत बढ़िया बात है। हमारे एक और श्रोता है कि यह भी खूबसूरत इत्तेफाक है कि हमसे हमारे इश्क का राज पूछ रहे हैं और हमने भी कर कह दिया रिश्तों में तुम्हारे बाप लगते हैं, तब लटकर उन्होंने सादगी से कहा, तब पर डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगाया, उस पर समझ में आया मोहब्बत तकरार भी अलग सुख देती है, मगर इस दिल तहलीस का कदम रखना इतना आसान नहीं है, यहाँ कभी जज्बात कांच की चुभते हैं, खामोशी भी जान लेती है। क्या खूबसूरत बातें आप लिखी हैं, और जब इतना अच्छा लिखा है तो हम चलते हैं हमारे

0: उसी इबारत की तरफ और हमने सब पहले लिखा कि वो हमारी मोहब्बत के बारे में पूछ रहे थे और हमें कह दिया डॉन को पकड़ना, डॉन पकड़ में नहीं आ और इससे ही तो इस इबारत से अगर समझ लें तो डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन है। ये गीत यहाँ पर होने वाला है, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। ये तो मैं मेरी पसंद से आप गीत सुनवाऊंगी और हो सकता है यही मांग आपकी भी हो, लेकिन बात बताइए कि ये जो फिल्मों के लॉग्स होते हैं इनमें से ऐसा कौन सा डायलॉग है जिसे बकायत में आप प्रयोग किया करते हैं? जल्दी से मुझे संदेश भेजिएगा, ऐसा कौन सा डायलॉग है जिसका उपयोग बहुत बार करते हैं और लोग उस बात पर उस आपके उस अंदाज पर खुश भी हो जाते हैं, तो जल्दी ये बात मैं बताएं। और हमारे श्रोताओं ने इस बारे में लिखा है, एक एक अलग बातें लिखी हुई हैं डायलॉग्स के बारे में लिखा है, तो चलिए हम ये गीत बढ़िया सुनते हैं और अगर आपकी पसंद का है तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आपकी और हमारी पसंद मिलती है।
1: अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है, निकले थे हम हलवा खाने मुंह जल गया है।

0: हम कभी हार गए, कभी हुआ है, कभी हारे, कभी हो गए, कभी इधर गए, कभी इधर। अरे तुम का भाई भैया हमरा का है,
1: बता दे
0: निकले थे।

0: ये गीत जो हम सुन रहे थे वो था डॉन फिल्म से। इसके पहले हमने डॉन फिल्म की एक झलक सुनी। ऐसे कई गीत आए पान बनारस के ऊपर, जिनमें से सबसे बेहतरीन आपका पसंदीदा गीत है किशोर कुमार गाया हुआ जान फिल्म अनजान के बड़े प्यारे बोल हैं। कल्याण जी आनंद जी ने इसे संगीत किया है। और हम बात कर रहे हैं जिला सफर कार्यक्रम में बड़े सुंदर से गीतों के बारे में और बड़े सुंदर से डायलॉग्स के बारे में। तो आपने हमें बहुत सारे डायलॉग्स भेजे हैं, कौन से आपको पसंद है या क्या आप सुनना पसंद करते हैं तो या कहना पसंद करते हैं और कहते कहते लोगों को रिझा लेते हैं। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं, उन दिनों की याद आती है, टेप रिकॉर्ड में मनपसंद फिल्मों के डायलॉग सुनाते थे और दोहराते थे। और हमारे शो ने हमें बड़ी अच्छी सलाह ली कि आपके पास बहुत सीन है, रिदानो मुझे पहचानो मैं कौन, जीन जीने का भी बहुत हसीन आया जा सकता है, बस आपको आत्मविश्वास होना चाहिए और सफर का साथ हमेशा बहुत मायने रखा है। हमारे श्रोता लिखते हैं, आई हेट योर पुष्पा, आई हेट योर पुष्पा, इन्हें यह लिखना। और पिक्चर अभी बाकी है, मेरे दोस्त अब फ्रेंड से मिलते कुछ बात जाती थी तो बोलते थे पिक्चर अभी बाकी है, और हमारी फ्रेंड हमारा दिल दिखाई देते थे एंड कहते थे आई हेट टीयर्स, मतलब मैं जी हम स्कूल में जो थे सारे डायलॉग बोला करते मजावा गुड़खा के, हाँ ये डायलॉग सभी लोग बोला करते हैं ना, मजावा गुड़खा के, गुड़खा के कैसे मरते हैं, गुड़खा तो खुशियां होती हैं, ये बात भी ये डायलॉग भी हमारे शो बोला करते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिल्म शक्ति का संवाद, इनकी बातें आकर किसी रास्ते पर मत चले जाना, जहां से चाहो तो वापस ना आ सको, यह साथ दिलीप को अमिताभ को समझा कर कहा, ये भी बात है। और हमारे एक और शान पसंद डायलॉग लिखा है, जिनके मकान शीशे होते हैं दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते। ऐसे कितने सारे डायलॉग्स हैं ना जो हमें पसंद। अभी इन डायलॉग्स के बारे में हम और चर्चा करेंगे, पढ़ते हैं ये संदेश।
1: सुनिए
2: सुनिए एक खुशखबरी,
3: कहिए ना,
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने संदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला अब सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन 11 बजे से 12 बजे की। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताए अपने दिल बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
4: सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग है भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लिया विविध भारती का क्रम।

सुन रहे हैं विद भारत राष्ट्रीय सेवा दे की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है सुरीला स्वर। सुरीले स्वर में हम चल रहे हैं डायलॉग्स के साथ, वो डायलॉग्स जो कहीं ना कहीं आपके जेहन में मेरे जेहन में कहीं ना कहीं बसे हैं और बसे गए हैं चाहे अब चाहे में निलाते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि हम बहुत अच्छा सफर इसमें चल रहे हैं और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी, आज की इबारत महज शब्दों का समूह नहीं बल्कि बॉलीवुड के सुनहरे दौर और हिंदी फिल्मों काल जयी संवादों के माध्यम से बुनी गई जीवन के प्रति दार्शनिक बेबाक अभिव्यक्ति। यह इबारत एक ऐसी शख्सियत को बयां कर रही है जो मजबूत है, भावुक भी, निडर है पर संवेदनशील भी, और जो जीवन की हर परिस्थिति में एक सिनेमैटिक अंदाज में जीती यार मानने की एक खूबसूरत दास्तान रचती है। इतनी अच्छी बात आपने लिखी है और हमारे रिश्ता इसी बात में एक और बात लिखते हैं कि आप हमारे एक मेडल स्टोर की शॉप है, जब भी कोई हमारे बहुत पुराने ग्राहक शॉप पर आते हैं तो हम उन्हें शोले फिल्म डायलॉग और ठाकुर ऐसा बोल देते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं और याद ही भी ठीक हो जाती है। कितनी अच्छी बात है, हमारे शब्दों से अगर किसी के जीवन में खुश आ जाए तो क्या कहना है। हमारे एक और शायर ने लिखा है, कई पुरानी फिल्मों के डायलॉग हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर, जैसे हम अंग्रेजों के माने के लर हैं, कितने आदमी थे, बड़े शहरों में छोटी छोटी बात होती रहती है, ऐसी सारी बातें हमारे श्रोताओं ने बताया है। और हमारे श्रोता ने लिखा है, कभी कभी यह डायलॉग हम उपयोग में लाते हैं, लातों के भूत बात से नहीं मानते और जेब में फूटी कौड़ी नहीं और चाम में होकर ख्वाब देखने, ये सी बातें हैं और बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे संवादों के लिए लिखा है कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि कुछ फिल्मी संवाद के जीवन में इस्तेमाल किया है। मैं एक संवाद, तुमने सपने देखे सपनों को टूटते नहीं देखा। दूसरा है, जिनकर सीसी क्यों वो पत्थर नहीं फेंका करते। और तीसरा है, मैं फेंके हुए पैसा आज भी नहीं आता। क्या बात है, हमारे श्रोता लिखते जरा सी परेशानी आती है तो हम कहते हैं ये काहे खत्म नहीं था। मतलब अगर हर बार भोजन यानी खाना खाते हुए भी खत्म तो ये डायलॉग दे ही देते हैं। क्या बात है, हमारे श्रोता बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी और शायद कुछ संदेश मैं पढ़ पाऊं या ना पाऊं मुझे शक कीजिएगा, पर ये जो अगला गीत है ना इसके लिए हमारे जाने बहुत अच्छा लगा है कि मोहब्बत में तारीफ ना के माफिक भी चाहिए, जरूरी भी है, जरूरत से ज्यादा भी नहीं। तारीफ पार्टनर को उसकी खूबसूरती अहमियत का एहसास दिलाती है। हम सर अपनी खूबियों को नहीं देख पाते पर जब कोई चाहने वाला तारीफ करा है तो हम उसकी नजर से देखने लग जाते, जिससे स्वयं आत्ममूल्य बढ़ता है और रिश्ते में सुकून आ जाता है। अगर तारीफ झूठी हो तो प्रेम नहीं बल्कि सौदाबाजी बनती है। सच्ची तारीफ भरो और अपनेपन भरोसा अपनेपन को गहराती है। अक्सर प्रेम में पुरुष स्त्री की आंखों और स्त्री पुरुष के मन की तारीफ करते पाए जाते हैं, लेकिन वही पुरुष स्त्री की आंखों और स्त्री के इस पुरुष के को पढ़ने की कोशिश करे ये पढ़े तो मोहब्बत किसी बाहरी सुंदरता की तारीफ की मोहब्बत नहीं रहती बल्कि मोहब्बत की तारीफ जाती है। और एक बहुत खूबसूरत डायलॉग है जो हम बचपन से सुनते आए हैं, राजकुमार का बेहतरीन संवाद है कि आपके पैर बहुत हसीन है। ये राजकुमार जी का बताइएगा, आपके पैर बहुत हसीन है जमीन पर मत रखिए मैले हो जाए। ये डायलॉग पाकर फिल्म का है और उसका ही एक हम आपको सुनवा रहे हैं। हो सकता है ये आपकी पसंद और मेरी पसंद दोनों का मिला पूरा हो। बताइएगा अगर आप पसंद और मेरी पसंद दोनों की पसंद मिल गई है तो जरूर हमें सूचना दीजिएगा और इतना बता दीजिएगा कि इस गीत के गीत का कौन है। और साथ में ये बताइएगा जो प्रश्न में चल रहा है उसको तो चलने दीजिए कि आपका पसंदीदा डायलॉग कौन सा है। और उस साथ बताइएगा कभी कोई डायलॉग किसी मित्र ने, किसी शख्स ने, माँ ने आपको सही अंजार सुना दिया हो और आप हंस हंस के लुपोट हो गए हो जहाँ पर आपकी टाई हो रही या डा पड़ रही थी, जरूर बताइएगा। सुनिए

0: हम सुन रहे थे पाकिस्तान फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में गुलाम मोहम्मद के संगीत के साथ। हमने आपसे पूछा था कि इस गीत के संगीतकार कौन है, तो हमने श्रोताओं से कहा छुपाया, बहुत अच्छे उन्होंने उत्तर दिया कि कैफी आजम ने इस गीत को बोल दिए हैं। और गुलाम मोहम्मद कितना खूबसूरत संगीत है ना, हमारे श्रोता लिख रहे हैं रेलगाड़ी की सीटी आकर्षण का केंद्र है, गाने की हमें सुनाई देती है। हाँ, हमने भी सुनी इन्हीं हेडफोन के जरिए विद भारती के स्टूडियो से, आपने भी सुनी होगी अपने अपने रेडियो पर, और हमारे श्रोताओं को बड़ा पसंद है, ये तो बहुत खुशी की बात है। और हमारे श्रोता लिखते हैं गीत रूह को छूने वाला एक एहसास है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, तो जब हमारे पसंद के गीत हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं आखिरी शबे इंतजार आखिर कभी होगी मुखसबी, ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलती जलती, क्या बढ़िया शेर उठाया है अपने गीत से। हमारे शो लिखती हैं, हमने पूछा आपसे कि आप कौन सा ऐसा डायलॉग है जो आपके घर वाले आपको देते हैं तो आप मार खाते खाते या डांट खाते हंसने लगते हैं। तो श्रोता लिखते हैं कि मम्मी है मुझे डांटे, कभी कभी जब मारने लगते तो मैं कह देती हूँ डॉन को ना कभी दर्द नहीं होता, तो मम्मी हंसती है, फिर क्या ना एक और डायलॉग बोल देती हूँ, हंसने वाले को बाजर कहते हैं, फिर हम और उनको और उनकी माँ दोनों बहुत हंसते हैं। तो बहुत सौभाग्यशाली है कि माँ आपके साथ आपको पिटाई की है और बहुत प्यार भी की है, इन दोनों को संभाल कर रखेगा। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे लिखे हैं, हमारे ने लिखा है आज के सूर्य सफर में की बात हुई तो उन्हें जो लोग पसंद है लिखे, चल तनु बसंती आज चल नो तनु नहीं धनो ना चल धनो आज तेरी बसंती की इज्जत सवाल है, तुम्हारा क्या नाम है संती, मैं आज भी फेंके हुए पे नहीं उठा था, मेरे पास गाड़ी बंगला है पैसा है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है आओ महारथी। ओ ये सारे डॉग ये बहुत प्यार से बोल हैं सुने हैं पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे बोला कि आज का मेरे खुद का डायलॉग है कि अपुन सफर के साथ यानी डबल सफर करता है, हम विविध भारती मुंबई के सुरीला सफर के साथ साथ ट्रेन के सफर का आनंद ले रहे हैं, आपकी तरह शुभ हो ये बात आप कहते हैं। और हमारे श्रोता कहती हैं कि हमारी आदत है शांति तुम नहीं जानती ये बोलने की। हाँ ये बड़े प्यारे से डायलॉग थे ना, मीठे मीठे सुरीले सुरीले। और हमारे श्रोताओं जब
1: अमिता बड़े राष्ट्रीय बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या, केंद्र सरकारकडून साखरेच्या निर्यातीवर तात्काळ प्रभावाने बंदी, शांतता आणि सुरक्षितता कायम जागतिक व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी राहतील असं परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ एस जयशंकर यांचं प्रतिपादन, केरळचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून व्ही डी सतीशन यांच्या नावाची घोषणा, आणि उत्तर प्रदेशात वादळी पावसामुळे झालेल्या विविध दुर्घटनांत गेल्या 24 तासात 89 जणांचा मृत्यू, 53 पेक्षा जास्त जण जखमी। केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली असून यामध्ये कच्च्या पाण्या आणि शुद्ध साखरेचा समावेश आहे। ही बंदी काळ प्रभावाने सप्टेंबर 2026 पर्यंत किंवा पुढील सूचना येईपर्यंत लागू असेल। साखरेचा देशांतर्गत पुरवठा सुनिश्चित करणं आणि स्थानिक किमतीवर नियंत्रण ठेवणं हा यामागचा उद्देश आहे। मात्र युरोपियन युनियन अमेरिकेसाठी काही विशिष्ट कोट्याकरता अपवाद असून केवळ त्यासाठी साखरेची निर्यात केली जाऊ शकते। त्याचप्रमाणे सध्या प्रत्यक्ष निर्यात प्रक्रियेत असलेल्या मालाला देखील यातून सूट देण्यात आली आहे। शांतता आणि सुरक्षितता कायम जागतिक व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी राहतील असं परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ एस जयशंकर यांनी

अरे वो सभागने आदमी थे हमारे श्रोता लिखे हैं, हमारे श्रोता लिखे हैं कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, हमारी इतनी बदली के बाद जब हम नहीं ले तो तुम क्या बदलोगे। ठाकुर साहब बर से क्या कोई बकरी का बच्चा है जो दौड़ा और पकड़ लिया। बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है और आपने लिखा है कैसे हो सुरमा भोपाली ये डायलॉग भी बड़ा अच्छा है। ये हाथ दे दे ठाकुर, ये डायलॉग है और ये डायलॉग हम कई बार याद भी करते हैं। हमारे शो ने बसंतीन के सामने नहीं नाचना भी लिखा है, इतने खामोशी क्यों है, डायलॉग भी यहाँ पर आया है। और इसके साथ ही बहुत सारे डायलॉग्स के साथ में हमारे शाह ने लिखा है कितना नाम रखे सरकार ने, ये बात भी कितने याद थे, ये सारे डायलॉग आपके रिपीट हो रहे हैं, सारे लोगों ने भेजे हैं। उसके साथ बड़े अच्छे डायलॉग हमारे बीच में आ रहे हैं और इसमें हमारे शाह ने लिखा है जानते हो संसार सबसे बड़ा क्या होता है, बाप के कहे पर बेटे का जनाजा। ये बड़ा खूबसूरत है और बड़ा दिल को कुछ कलेजे में कुचने वाला ये डायलॉग है। शोले फिर पुराने जमाने के जर मूवी जित बार देखी है, अच्छी लगी है, मालिनी का सीन बहुत अच्छा है। कहते हैं प्रभु आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कन्या यूके यूके, वो सारी बात जो चलती है बड़ा मजा आता है। तो कालिया कहता है दो हैं कहाँ रे फौजी पर दो, कई सारे डायलॉग जो है लोगों को पसंद आते हैं। तो चलिए ऐसी सुंदर गीत आप सुनते हैं और अगला जो गीत है वो आपको सौंप रहे हैं, यही करना है कि गीत के गायक पहचान ले हैं और जरा सा पहचानिए कि ये डायलॉग कौन सा होता है। डायलॉग साथ में आप पहचान लीजिए जल्दी से वो डायलॉग क्या होगा और ये फिल्म कौन सी होगी।

इस गीत का एक ही अंतर हम आपको सुनवा रहे हैं क्योंकि हमें सुनवाने बाकी डायलॉग के गीत भी, और इसके साथ में हमसे पूछा कि ये गीत वो है वो किस फिल्म से है और बता दीजिए जल्दी से। आपने हमें बता दिया दामिनी फिल्म से है और बहुत अच्छे से बताया कि ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता, इसके साथ तारीख तारीख शायद इसी फिल्म का डायलॉग है। सही, चलिए ये सारा डायलॉग तो आपने बताया, आपने लिखा कि तारीख पर तारीख मिलती रही लेकिन इंसाफ नहीं मिला, माय लॉर्ड इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। बिल्कुल सही, और श्रोताओं ने बहुत अच्छी चीजें लिखी है।

पता नहीं उठ जा उसके साथ तारीख तारीख शायद इसी फिल्म का डायलॉग है कुछ सही। चलिए ये सारा डायलॉग तो आपने बताया, आपने लिखा कि तारीख पर तारीख मिलती रही लेकिन इंसाफ नहीं मिला। माय लॉर्ड इंसाफ नहीं मिली है तो सिर्फ ये तारीख, बिल्कुल सही। और श्रोताओं ने बहुत अच्छी चीजें लिखी है और खाली आंखने आदमी थे डायलॉग भी श्रोता ने दिया है। और इसके साथ में आपको अलग अलग गीत की कई सारी बातें बनाऊंगी, तो एक डायलॉग मैंने लिया है, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, उसके वह गीत है इस फिल्म ओम शांति ओम से। और उसके साथ ही हम एक और बड़ा प्यारा सा

आंखों में अदाएं हैं और बात आ जाती है कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं शुरू हो जाती है। ये डायलॉग भी इस फिल्म का है जो कि फिल्म क्लिया। तो सुनते हैं थोड़ा सा नगमा।

और अब हम चल रहे हैं आज के कार्यक्रम अंतिम डायलॉग के साथ में, और वो डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा है। अगर बताएंगे वो डायलॉग कौन सा बचा है तो जरूर बता दीजिएगा। बाकी हम तो आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि बाबू भाई जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और ये फिल्म कितनी खूबसूरत थी, किसने देखी, कब देखी जरूर बताइएगा। मैंने अभी दो दिन पहले इस फिल्म को देखा है, हर रोज मैं इसको देख सकती हूँ, जीने की इच्छा देती है। सुनते ये खूबसूरत सा नगमा, और आपको जो थोड़े थोड़े गीत सुनवाए हैं उसके लिए चाहती हूँ कभी और की और रोज वो जो गीत रह गए उन्हें पूरा।

0: जो हंसाए, कभी ये झुलाए।
1: आनंद फिल्म का ये गीत सभी सुन रहे थे और हमारे श्रोता ने बहुत सी चीजें लिखी, उन्होंने वह पूरी कविता लिख डाली। मौत वो एक कविता है, मुझे मुझसे एक कविता का वादा है, वो पूरी कविता पढ़ने समय तो नहीं, जिंदगी की डोर ऊपर वाले के हाथ किसकी डोर जाए, ये बात है। और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीज लिखी और लिखा की आनंद फिल्म उन्होंने दूरदर्शन पर की थी और कई सारे और डायलॉग्स हम तक आए हैं। और हमारे एक श्रोता ने लिखा, एक चुटकी सिंधी कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। बिल्कुल ही बात है, अगर हमारे श्रोता ने बहुत अच्छा डायलॉग दिया है। और उसके साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं कि अगर किसी इसको दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुमसे मिलने की कोशिश लग जाती है। विद भारती राष्ट्र सेवा देश की रेली धड़कन है। कार्यक्रम सुरीला समय आज के बस इतना ही, दीजिए नमस्कार।

नमस्कार मित्रों, आज की त्रिवेणी आधारित है रंग पर। साथियों, इस संसार में जो कुछ भी भौतिक रूप से उपस्थित है वो स्वाभाविक रूप से प्रकाश को परावर्तित करता है। हम जिस भी इसको देख रहे हैं वो उसका अपना रंग नहीं है, हम बस परावर्तित प्रकाश के रंग को देख रहे हैं। हम कहते हैं कि घास हरी है, लेकिन घास हरी नहीं है, हरे रंग के प्रकाश को लौटा रही है, परावर्तित कर रही है, इसलिए हमें हरी घास नजर आता है। आकाश नीला है? नहीं, आकाश नीला नहीं है। हमें ये पता है कि अंतरिक्ष नीला अंधेरा है, वह नीला जैसा कुछ भी नहीं है। आकाश अगर नीला नजर आता है तो उसकी वजह बिल्कुल अलग है। नीले रंग का अपवर्तन गुण बाकी रंगों से बिल्कुल अलग है, इसी वजह से आकाश नीला है।

संसार में किसी भी चीज में रंग नहीं है। पानी, हवा, अंतरिक्ष, पूरा संसार रंगहीन है। यहाँ तक कि जिन चीजों को भी हम देखते हैं वो सभी रंगहीन है। रंग तो केवल काश में होता है, रोशनी में होता है। रंग वो नहीं है वो दिखता है, बल्कि वो है जो आगता है। जो भी रंग बिखेरते हैं वही हमारा रंग हो जाता है। हम जो अपने पास रहेंगे वो हमारा रंग नहीं होगा। ठीक इसी तरह से जीवन में जो कुछ भी हम देते हैं वही हमारा गुण हो जाता है, हमारा व्यक्तित्व हो जाता है।

जो रंगों से परे है वो रंग ही नहीं है, वो पारदर्शी है, वैराग्य है। इसका मतलब है कि हम ना कुछ रखते हैं और ना ही कुछ परवर्त करते हैं, यानी हम पारदर्शी हो गए हैं। अगर हम पारदर्शी हो गए हैं तो हमारे पीछे की कोई चीज अगर लाल है तो हम भी लाल हो जाते हैं, अगर हमारे पीछे मौजूद कोई चीज नीली है तो हम भी नीले होते हैं। हम जहाँ भी होते हैं उसी का हिस्सा हो जाते हैं, लेकिन किस भी चीज में फंसते बिल नहीं है क्योंकि हम पारदर्शी हैं और वो रंग एक पल के लिए भी हमसे चिपकता ही है। हम शांत, संतुष्ट, उत्साही और जिज्ञासा रहते हैं।

जैसे कि जानते हैं विविध भारी हर मई करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोकगीत और कुछ दिलचस्प बातों सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाश ऑडिटोरियम गुनाथ टावर के सामने दिदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा दे की सुरी धड़कन। दोपहर 2:15 होने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकता। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौती के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता बीडी सेशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन निरीक्षण प्रक्रिया एआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इस ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तंत्र प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और साथ साईराज रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देश के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इस अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग, सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है।

0: अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस शंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: डिस्कशन मस्ट एडवांस।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांत तथा साझी किन अलग जिम्मेदारियों की भाव पर आधारित हो। तकनीक की प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल ही संघर्ष ने संवाद कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर शंकर ने भागीदार देशों को उपस्थित और सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चले संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सका है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु चुनौती वैश्विक स्थिति को प्रभावित रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करें। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
3: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा, रूस के विदेश मंत्री सरे लावरोफ, ईरान विदेश मंत्री सैयद अब्बास अखची, इंडोनेशिया विदेश मंत्री सुगिनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोल सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबुधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNO गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ संयुक्त अमीरात भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते TEP के अंतर्गत वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक पहुँचाने की प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
5: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध केवल व्यापार और व्यस्त तक सीमित नहीं रहे हैं। हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तृत कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब क्षेत्र भूतपूर्व परिस्थिति से गुजर रहा है।
4: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात 37 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया। दुबई से विनोद मार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारे वेबसाइट www.newsonai.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआई ऐप पर उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज वीडियो सेशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित किया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास जी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2.5 से 1 बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व सरण की मंत्रिपरिषद के नव नियुक्त सदस्यों को भाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम, कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा

0: आदिवासी कल्याण भाग दिए गए, अतुल बोर्ड पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चार बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता योग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित देशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हमला स्वीकार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्य जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय वैज्ञानिक अनुसंधानों को सशक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग मजबूत करने और अधिक समन्वय बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। मंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात।
2: ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल, सेवा, साहस, शौर्य, समर्पण के संचित घोर का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रहने का काम एनडीआरएफ और एनडीआरएफ ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रिड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रिड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान से एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इसमें उसी रात अमृतसर में एक से चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हुई और कई अन्य घायल हुए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादा मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। सभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉक्टर यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल @AR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये

0: आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज चीन राजधानी पेकिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पल में आज शी जिनपिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमरीका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमरीका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए, इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वर्ष चीन अमरीका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमरीका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में चीन ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजेता नहीं होगा। राष्ट्रपति ट्रंप की यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और के बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधान के बीच रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश पारल।
0: ग्रीष्म थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्ते वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंचे। पिछले वर्ष मार्च में 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्ते में यह वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आरी क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की माली शू को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हक की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में दिन के ब्रिक्स देश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर ले जाने के तैयार। कांग्रेस नेता बी डी सत्यन केरल के अगले मुख्यमंत्री के। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन निरीक्षण तैयार के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धकन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: है धाराएं तीन विचार स्वर और संगीत
2: तुझको जलना होगा तुझको जलना होगा
1: बातें जो दे है हौसला शब्द जो दे है सुकून
2: सोचो इसमें अपनी हर है कि देर है
1: हालात से हुलुहान को मिला है ठिकाना विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ
2: तुम देना साथ मेरा वो हम नवा
1: वो है कार्यक्रम वेणी
2: तुम आ गए हो नूर आ गया है
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध पर आलस भरी सुबह जिसे चाहे घुल जाए चीनी
3: देख जी भार आई बाहों में खिली
1: आपके लिवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत
2: मैं तेरा दाग तू मेरी दागनी
1: गुरे दौर की आवाजें धुओं की अनूठी पराज सुनहरे गानों का आगाज आप सुबह को लाए खास भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 सिर्फ विद भारत पर
0: आप सुन रहे हैं विविध भारत राष्ट्रीय देश की सुरील धड़कन आइए सुन है अगला गीत डिटेक्टिव फिल्म से गीता दत्त हेमंत कुमार की आवाजों में शैलेंद्र के बोल और मुकुल रॉय के संगीत के साथ

0: चले गए हम।
1: हम सुन रहे थे ये गीत काला पानी फिल्म से मोहम्मद रफी आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देववर्म के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे ये गीत आखरा फिल्म से आशा भोसले की आवाज में मजरूह सुल्तानपुर के बोलो मदन मोहन संगीत साथ। आई सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला नगमा जो कि है फिल्म आड़ी से। लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें हैं, हसरतपुरी के हैं बोलो, शंकर किशन का है संगीत।

हम सुन रहे थे मधुमति फिल्म का यह गीत मुकेश की आवाज में शैलेंद्र केबुल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ। आइए सुनें सदाबहार नगमे का अंतिम गीत और इस गीत के साथ आप मुझे आज्ञा दीजिए, आपका कल्याण हो ये प्रार्थना करती हूँ। और सुनिए ये गीत मार फिल्म से सुरेया शमशाद बेगम और साथियों की आवाजें हैं, शैल बदायूं के उल हैं और गुलाम मोहम्मद का है संगीत।

0: बहुत सुंदर था। जिस तरह से इसमें खनक ना वैसी कुछ खनक रंग में होती है और रंग भी मन को मोह लेते हैं। और आज हम जिस महिला की बात कर रहे हैं, चित्रकार हैं, जो अब रंगों का जादू ना वो चलाती है ना रंग की अपनी कलम, तो वो नजर आता है।
1: कुछ सही कहा। और भूरी भाई, ये उन सफर हमें ये बताते हैं चंचल कि कला छुपाए नहीं छुपती, वो दुनिया तक एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। इसलिए घर कोई बच्चा हो, आप स्वयं हमारी सखी खास तौर, वो क्यों ना किसी भी प्रकार की कला अगर आपके अंदर है तो उसे कहीं भी रखिएगा नहीं, कभी पाइएगा नहीं।
0: और ये जो अवसर है जब स्कूल के बाद बच्चों की छुट्टियां होती हैं, यही मौका उन्हें मिलता है कि उनके अंदर कोई कला है तो उसे आप उभारें और उन्हें कोई ऐसी क्लासेस एक्टिविटी के लिए भी आप भेज सकती हैं, ताकि उन्हें खुद को जानने का अवसर मिले।
1: और बच्चों के साथ खुद क्यों नहीं, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा वक्त है
0: जी,
1: और अगर आपको मान लीजिए कि 40 या 45 उम्र के पास को लगता है मैं कोई डांस क्लास हूँ, लेकिन मन में पहला ख्याल क्या आता है, अरे अब कहाँ, तो ये ख्याल आने भी मत दीजिए। जरूर अपने पास की किसी कोई क्लास कहीं पे कुछ सिखाया जा रहा हो जाकर एक बार देखिएगा जरूर कि आप कर पा रहे हैं या नहीं।
0: और 40-50 के बाद तो मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा अच्छा समय होता है, उस वक्त अधिकतर महिलाएं या पुरुष बच्चों की जिम्मेदारी से काफी हद मुक्त होते होते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख अपने नौकरी के या बड़ी किसी पढ़ाई के लिए वो विदेश चले गए होते हैं या कहीं और किसी शहर में चले हैं या अपने ही शहर में वो व्यवस्थित शादी करके या नौकरी करके सब हो चुके होते हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: तो आप अपने समय निकालने का अब वक्त आया है, तो बिल्कुल पीछे ना हटे, अपने शौक को पूरी तरह से लीजिए। तो आज बात कर रहे हैं चित्रकार भूरी बाई के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश झाबुआ जिले छोटा सा गांव है डॉल, वहाँ पर इनका जन्म हुआ 1968 में। और उनके माता पिता बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से आते, तो मैं मजदूरी का काम किया करते, पढ़ाई लिखाई भी उनकी हो नहीं पाई था, क्योंकि उनका जो

0: सकते हैं ना कि पृष्ठभूमि जो रही उस तरह की थी, उन्हें लिखने का मौका ही मिल पाया। और जब छोटी सी थी वो तो चित्रकारी का बड़ा शौक था उन्हें, और मिट्टी और गेरू जो आमतौर हम देखते हैं घरों में गेरू से कुछ रंगोलियां अल्पना बनाई जाती है, तो उन्हीं से बस उन्हें खेलने का शौक लगा। और खेलते खेलते रंगों से कभी हाथ कभी घोड़ा और कभी पेड़ों के जंगलों से जो चीजें मिल जाती उन्हें आकर वो चित्रकारी का शौक है उसे पूरा किया करती थी।
1: जी अब क्योंकि छोटी सी उम्र थी उनकी तो पड़ोस के ही गांव में का ब्याह हो गया, पति पत्नी दोनों आसपास के गांव शहरों में मजदूरी कर अपना जीवन चला ही रहे थे बस इसी तरीके से। और भूरी भील आदिवासी समुदाय भित्ती चित्र परंपरा में बहुत प्रशिक्षित भी थी और घर की दीवारों पर गिरू से या भी कोई दूसरे प्राकृतिक से चित्रकारी करती थी। और ये हुनर कहीं कुछ ऐसा है कि राजधानी मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल तक ले आया। तो 1982 की बात थी, भोपाल में भारत भवन निर्माण चल रहा था, तो प्रदेश के अलग अलग अंचलों से आदिवासी कलाकारों को बुलाकर यहाँ के निर्माण में मदद लिया जा रहा था। उस तुरी बाई के पति को भारत भवन में बगीचे की देखभाल का काम किया, उनके साथ वो भी भोपाल जाए।
0: और बिल्कुल, क्योंकि उस कच्ची मिट्टी से उसे खेलने का शौक तो उनको था ही, इन प्राकृतिक रंगों की चित्रकारी से जो हुनर उनको मिला था तो बस उनके पिता आए तो वो भी ले आई। और उन पिता जो कि बगीचे देखभाल का काम किया करते थे
1: जी, उनके पति चले आए।
0: हाँ,
1: पति के साथ
0: पति तो चले आए और उन्होंने भी भारत भवन में मजदूरी का काम करना वहां शुरू किया। यहाँ उनकी मुलाकात हुई उनके जो गुरु थे जे स्वामीनाथन उन हो गई, और उनकी जो संस्कृति वहाँ के जो भी देवता है उनको समझने के लिए भीबाई और पति से उन्होंने बात की, जिसके दौरान उन्हें ये भी पता लगा कि देवी देवता के चित्र घर की दीवारों पर बनाने की बहुत पुरानी परंपरा रही है देश में। तो जे स्वामीनाथन ने पहली बार भूरी बाई से देवी देवताओं के चित्र कागज पर बनाने को कहा, यानी कि दीवार पर तो बनते ही कि ये चित्र कागज पर किस तरह उकेरे जाएंगे इनको कहा।
1: तो वे तो उंगलियों से बनाती थी, अपने कैनवास पर बनाने के लिए कहा तो बड़ी समस्या के सामने आन पड़ी, घी में कभी कलम को तो हाथ ही नहीं लगाया घर पर उन्होंने, लेकिन क्या था तो प्रैक्टिस। और फिर पहुंची अपना गुरु के जे स्वामीनाथ के पास, भूरी बाई ने 5 दिनों में ये काम करके दिखाया जिसके लिए उन्हें उस वक्त 50 रुपए मिले। यहाँ जी
0: भाई उस समय की जब बात कर रही हैं तो 50 रुपए मिलना अपने आप में बड़ी बात हुआ करती थी। और यहीं से जो उनकी कर की यात्रा ये भी शुरू हो गई और ये ऐसी शुरू हुई फिर आगे कर विश्व स्तर तक पहुंची है। और भूरी बाई अपने बारे में बताती हैं कि उन्हें चित्रों में जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर है, जंगल है, पशु पक्षी है और त्योहार, ये उनके मुख्य थे जिनको वो चित्रकारी में उकेरा करती। और इन चित्रों छोटे आयतकार आयता को बनाया करती जिनमें उंगलियों से बिंदी बिंदी लाकर उसे वो बिल्कुल जीवंत बनाया करती थी। हर कलाकार का चित्रकारी करने का जो एक अंदाज होता है तो वो उनका अंदाज था।
1: भूरी बाई कहती हैं कि उनको कला पहला सम्मान 1986 मिला और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी देवी अहिल्या सम्मान उन्हें दिया। 2018 में उनके चित्रों पहली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी भी लगी जो कि अमेरिका में लगी। बाद में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और जापान जैसे देशों में भी अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। हर जगह उनकी चित्रकारी को इतना पसंद किया गया कि उसके बाद मतलब उन्हें साल हर साल बुलाया ही जाता था कि आप आकर एग्जीबिशन लगाई।
0: बिल्कुल, हम अगर देखें कि उन क्या पृष्ठभूमि रही, इस तरह के परिवार से वो होती हैं, उन्हें पढ़ने लिखने वो स्कूल जाने को नहीं मिला, किसी बड़े स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं है उनके पास में, लेकिन जिस तरह के सम्मान उन्होंने पाए सिर्फ अपनी उस कला के जरिए। अगर आप शिद्दत से कोई भी काम करें वो छोटा बड़ा नहीं, वो आपको कहीं एक जगह ले जाकर वो सम्मान दिला सकता है।
1: बिल्कुल, वे कही है कि अब समुदाय में वो पहली महिला है जिन्होंने कागज और कैनवस का इस्तेमाल किया और पेंट करने के लिए अपने आप को भाग्यशाली समझती है। एक दूर से लेकर विश्व स्तर तक अपने समुदाय की पेंटिंग को पहचान दिलाने वाली विपली महिला बनी जिसके लिए उन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला।
0: और भूरी बाई का ये मानना है कि आप चाहे गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, किसी भी महिला को अपने क्षेत्र में हुनर को आगे ले जाते हुए जीवन में आगे जरूर बढ़ना चाहिए। और हम भी यही शुभकामनाएं देते हैं अपनी सभी सखियों को, अपने सभी साथियों को कि आप उम्र को एक सिर्फ नंबर मान के चलिए और उम्र को किसी चीज में आड़े मत आने दीजिए, आप आगे बढ़िए, अपने शौक को पूरी तरह से जी लीजिए। और अभी गाना सुन ले
1: जी।

0: पानी पता कैसा होता है कि जिस रंग में मिल जाए वैसा ही बन जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और दोस्ती भी ऐसी थी, आपको दोस्त कोई बहुत अच्छा जाए ना, आपके रंग में रंग जाए, बस ऐसा दोस्त एक भी आपके पास है ना तो वो 100,000 दोस्त के बराबर है।
1: बिल्कुल सही कहा। और यही एक संदेश हमारी सखी ने लिखा है, दोस्ती से ही तो प्रेरणा लेकर सखी सहेली का नामांतरण हुआ हो। हम आपस में अच्छे दोस्त हैं, सोचो अगर सखी सहेली ना होती तो हमारी दोपहर इतनी सोनी होती भाई, सखी सहेली के रहते आपकी दोपहर कभी सोनी नहीं होती।
0: और पता है दीपा, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे रिश्तों से घिरे हुए होते हैं, जिनमें अधिकतर या तो हम कहें सभी रिश्ते जन्म संबंधित होते हैं, और जन्म से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं इन्हें बदलना भी हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन इन जन्म से जुड़े रिश्तों के अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है वो है दोस्ती का, वो रिश्ता है जिसे हम अपनी सोच समझ के साथ में खुद चुनकर खुद इससे जुड़ते हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: और जीवन हर कदम पर अलग अलग लोग हमें मिले हैं, कुछ अच्छी जान पहचान हो जाती है, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम दोस्त कह पाते हैं। और मुश्किल समय में जो व्यक्ति हमारे लिए मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ता है वही सच्चा दोस्त होता है।
1: लेकिन चल वहीं कुछ लोग ऐसे भी हो हैं जिनके जीवन में दोस्त नाम का रिश्ता नहीं होता। सोशल नेटवर्किंग के जमाने में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई दोस्त नहीं है, तो क्या ऐसा है कि उनको दोस्त करने का सही तरीका मान नहीं है?
0: ऐसा तो नहीं हो सकता।
1: समय के साथ साथ दोस्त के मायने भी बदल रहे हैं। आज जहाँ ज्यादातर लोग अपना मतलब और स्टेटस देखकर दोस्ती करते हैं, वहीं पुराने समय में दोस्ती का संबंध सिर्फ पहले कैसा होता, बिल्कुल दिल से हुआ करती थी,
0: दिल से जुड़ जाते थे।
1: जो थोड़ा सा एक मॉडर्न जमाना कह लो या आधुनिक कह लो, स्वार्थ की जांच कर लीजिए, आज दोस्त को एक माध्यम तरह बना गया है, जबकि ऐसा कतई होना नहीं चाहिए।
0: इसीलिए तो हमारे साथी लिख रहे हैं कि दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा और सूना लगता है, क्योंकि दोस्ती हर खुशी और जश्न और गम को हल बनाते हैं, भरोसे ईमानदारी और बिना शर्त के हमारे सपनों को सहारा देते हैं। एक सच्चा दोस्त जीवन में सुकून, मस्ती और निस्वार्थ साथ लेकर है। दोस्त के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो हमारे साथी ने हमें लिखकर भी है। खुशी का एहसास, दोस्तों बिना जिंदगी रंग है, वो हर पल को खुशी से भर देते हैं। सच्चे दोस्त की पहचान होती है कि अपनी कमियों को स्वीकार करे, मुश्किल समय हौसला बढ़ाए, भावनात्मक सहारा देते हैं, सिर्फ हंसी मजाक नहीं बल्कि रोते हुए को भी सहारा देते हैं, कड़वे बताने वाले भी होते हैं। और दोस्ती एक ऐसा बन है जिसे हम अपनी पसंद चुनते हैं, उसमें स्वार्थ अहम इन चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा। और इस हमारे से कह रही है कि दोस्ती कोई बात की जाए जैसे कृष्ण सुदामा और कर्ण दुर्योधन की मित्रता की चना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्त दूसरे दोस्त के चेहरे का भाव समझकर उसके लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं, और दोस्ती यही मांगती भी है, अपना स्वार्थ नहीं होता उसमें, भाव यह रहता है कि हमें ये वापस मिल जाएगा लेकिन तू जो मतलब है वो तू बस मेरे साथ रहे, बाकी सब छो जाएगा। आज के युग में बनावटी दोस्त मिल जाएंगे लेकिन आप पास भरकुल संपत्ति हो चकते नहीं है, कभी कम होगा और कमांगते रहेंगे जिनसे आप वापस कुछ पाने की उम्मीद बिल्कुल ना कर, यानी वो बनावटी दोस्त के बारे में बा रहे हैं।
0: तो छे अब सिर्फ बातें नहीं करते, कुछ सुन लेते हैं। अच्छा
1: चलिए,
2: दोस्ती यारी रद्द हो गई, प्यार में मियादारी कैसी मुड़ी चीज नर हो गई है, चीची यार की ये पहन दोस्ती कैसा है, जब दोस्ती होती है तो
3: ऐसा नहीं होता।

कर पत पान अर्थात पानी बिना चले स्नान नहीं होता जब दोस्ती होती है तो दोस्ती होती है।

0: सही होगा, हम पालो है भारत की जो कहते वही होगा, जब जो की पंचायत सोचे सही होगा, हम पालो है भारत की जो कहते वही होगा।
1: ओए गम के एक जमा दूं।

0: अर्थात कष्ट बिना ये जीवन
1: आसान नहीं होगा। अब दो की होती है तो दो की होती है, अब दोस्तों में कोई ऐसा नहीं होता जब दो की होती है।
0: उंगली उंगली जब तक जो सलामत साथ सलाम, छोटी और बड़ी है तो क्या जो है तो हाथ सलामत, एक एक के है पांच मुकद्दर, तकलीफ है घबरा मत, साझे जोड़ जब अपनी बचपन पांच पांच मिले
1: तो ही होता जब दोस्ती होती है, दोस्ती होती है और दोस्तों में कोई ऐसा नहीं होता जब दोस्ती होती है, जो दोस्ती होती है तो दोस्ती होती है और दोस्तों में कोई ऐसा नहीं होता जब दोस्ती होती है।
2: बिल्कुल सही थे कि दोस्ती सिर्फ दो ही होती है, कोई एहसान नहीं होता, लेकिन इस समय हो चाहे एक छोटे से अंतर का

0: विविध भारती पर इससे मिल रहा है विक्रम सखेली। मैं हूँ आपके साथ आपकी खींचन चलवा
1: और दीपा ऐश्वरी।
0: तो भाई हम बात कर रहे थे दोस्ती की।
1: दोस्ती
0: देखो दीप, हम दोनों भी बड़े अच्छे दोस्त है ना
1: और हमारी सखियां भी सारी दोस्त
0: जी
1: भी तो ये लिख रही है कि दोस्ती बिना जग सूना होता है। जैसे कि सहेली प्रोग्राम में सखियां दोस्त हैं, हर रोज एक घंटा हमें मिलता है, सखियों सुख दुख बातें करते हैं, हम सब सखियों को जीव के अलग अलग विषयों मार्गदर्शन मिलता है और सखियां भी इस दोस्त कमेंट करके बेझिझक बातें करती है। भाई यही तो होना चाहिए कि क्योंकि हमारा जरिया यही कि हम कम करके एक दूसरे से अपने हर मन की हर बात को हम साझा कर सकें।
0: बिल्कुल। और देखिए अगले संदेश में भी अच्छी बात है, हमारे साथी हैं लिखते हैं, दोस्ती अमूल्य होती है जिस धन से खरीदा नहीं सकता। इसी कहा जाता है दोस्ती के बिना सूना है। यदि जीवन में दो ना हो तो सूनी सूनी और बेरंग लगने लगती है, जो हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते और उदासी को दूर करते हैं। ये जीवन का सबसे सुंदर और अनमोल रिश्ता है। ये एक ऐसा बंधन है जहाँ बिना किसी स्वार्थ के ये दोनों को जोड़ता है। सच्चा मित्र हमें सुख दुख आती होता है, जीवन में कठिनाइयां जब आती हैं तो दोस्त हमारा हौसला बनते हैं। दोस्ती अपनापन विश्वास और समझदारी होती है। एक अच्छा दोस्त हमें राह दिखा है, गलतियों से बचने की सीख देता है। तो हाँ, इन्होंने लिखा ना कि दोस्तियों का बंधन, तो दोस्ती बंधन है जो कोई बंद नहीं होते।
1: सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और हमारा एक संदेश आया, ये तो श्रोता भाई ये कहते हैं, जैसे मेरी जिंदगी में

0: भारती सखी सहेली एक सच्चे दोस्त के रूप में आया वैसे महसूस हो कि एक सच्चे और प्यारे दोस्त के बिना सुना है। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब अपनी हमारी भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाते कि एक सच्चा मित्र ना कहे मन की बात समझ जाता है। सखी सहेली ने सिर्फ साथ नहीं दिया बल्कि हर दिन अपनपन मुस्कान और भावनाओं का एक सुंदर रिश्ता दिया है। ये कहते हैं कहूं तो जैसे दोस्त बिना जग सुना लगता है ऐसे ही सखी सहेली के बिना जीवन का एक हिस्सा अधूरा लगता है। तो क्या बात है, हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दें और ये साथ यूं ही चलता है, ये इसी बात की हम कामना भी करते हैं।
1: और भी बता दें कि जो आने वाला महीना है यानी जून, 2 जून को सखी सहेली की वर्षगांठ है, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए अपनी सहेली के लिए, इस दोस्त के लिए।
0: बिल्कुल सर।
1: तो अगला संदेश पढ़ते हैं, इसको हमारे श्रोता जो भी लिखने वाले हैं संदेश को, उन्होंने गीत की पंक्ति से शुरुआत की है कि दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा है और सूना है। दोस्त केवल साथ रहने वाले लोग नहीं होते बल्कि वे खुशियों को दुगना करने वाले, दुख को आधा करने वाले हिस्सेदार होते हैं। उनके बिना सी यादें मुश्किल समय में डारस बंधाने वाले ये लोग होते हैं। सुख बांटने लिए दोस्त सबसे सहारा होते हैं। दोस्तों के साथ बिताया हर पल जिंदगी की असली कमाई है और इसी दोस्ती के बिना जीवन में एक गहरा पूनन सुनापन आता है। बिल्कुल आप दोस्त बनाइए। अगर आप अकेले रहने की आदत है या आपको लोगों से मिलना जुलना पसंद है तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर आप दोस्त बना रहे हैं तो लोगों पर आंख उनका भरोसा मत कीजिए कि वहां पर भी आपको धोखा देने वाले दोस्त मिल सकते हैं।
0: और एक हमारे साथी संदेश है कि रेडियो तो हमारे बचपन से साथ ही रहा है। एक समय था एक बार के लिए खाना भूल जाते थे पर सखी सहेली सुनना नहीं बोल पाते थे, पर आज व्यस्तता चलते बस सखी सहेली सुन पाते। परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ हम आपको सच्चा दोस्त मानते हैं भाई, हमारे लिए आप हमें सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि श्रोताओं के बगैर, हमारी सखी और सहेलियों के बगैर तो ये प्रोग्राम पूरा अधूरा है। इसकी ये जो रिश्ता है, इसकी डोर अगर एक तरफ स्टूडियो है तो दूसरी तरफ आप सब है, आप ही सबसे इसकी सुंदरता है।
1: बोल अगर सोचिए हम दोनों ही मिलकर सारी बातें करेंगे पर इनके कमेंट नहीं होंगे तो प्रोग्राम कितना खाली सा लगे ना।
0: बिल्कुल, इनके बिना तो सब वैसे ही सब कुछ सुना है।
1: तो भाई चलिए सुना दूर करें और संदेश पढ़े हैं। दोस्ती की मिसाल देखना है तो हमारे विविध मती के फेसबुक के मित्रों देखिए, वहाँ हर रोज मिलते हैं और पर्सनल मुलाकात करते हैं।
0: क्या बात भाई, तो बहुत ही सुंदर बात है।
1: तो अब दोस्ती की बातें, क्यों ना एक दोस्ती भरा गीत सुन ले।
0: चलिए।

0: जैसे कि जानते हैं विविध भती हर ने करता है अपनी एक फिल्म सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आया है लोक संगीत की हीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बात का गुलदस्ता। ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताक्षी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंग रंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर ताकी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर सामने देवीदा लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों की कराएं।
1: हम भी ये अनुरोध करते हैं कि आप मुंबई में रहते हैं तो सृजन भारती के इस अगले अंक में आप जरूर हिस्सा भरें इसका। और अब हम बात कर रहे हैं हमारे अगले वे पर, जिस हमने बताया कि भाई किश्तों में अगर आपको कोई सामान लेना है तो वो कितना सही है या कितना गलत है, क्योंकि किश्तों पर खरीदारी करने की कितना आसान ईएमआई पर किसी चीज को लेना जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बन गया है और ये दो धारी तलवार की तरह होता है ना।
2: बिल्कुल सही कहा, अगर समझदारी से इस्तेमाल किया गया तो ठीक, ना किया जाए तो ये कर्ज के जाल में भी आप फंसा सकते हैं।
1: बिल्कुल, इसीलिए हम कहा कि ये दो धारी तलवार है, अगर आसान है तो आपके लिए मुश्किल का सबब भी बन सकता है। और इस पर इतनी सही बातें संदेश के रूप में हमें हमारे साथियों ने लिखकर दी हैं। तो इनका कहना है कि किश्तों पर खरीदा कितनी सही है। भाई आजकल ईएमआई और यूपीआई का जमाना है और समृद्ध दुनिया ही नहीं बल्कि हर कोई इसी तरह से खरीदारी करने में चाह रहा है, लेकिन कहीं से कोई एक गलत क्लिक हुआ तो फिर लेने के देने पड़ जाया करते हैं। इसीलिए इसके उपयोग के पक्ष में हम इसलिए भी नहीं है क्योंकि इससे पहले ऋण लेकर घी पीने की आदत बन जाती है और हम लोग उसके अधीन होकर अपने चैन सुकून को खो देते हैं और तनाव भरी जिंदगी जीते हैं, फलस्वरूप तनाव अलग से झेलते। तो ये बात सही है, जब महीने का वो समय आता है किश्त चुकाने का तो वो एक तलवार तरह आपके सर पर वो लटका रहता है, किश्त देनी है। उस चक्कर में कई बार आपका सुख चैन नींद खाना पीना सब कुछ हराम हो जाता है। इसीलिए कोई बहुत बड़ी चीज इसके लिए बड़ी किश्त चुकानी पड़ रही है और आपको लगता है कि आपकी आमदनी से बाहर वो चीजें फिर जा रही हैं।
2: लेकिन चंचल ये बताओ, देखो महंगी वस्तुएं हैं जैसे कि घर हो कार है या महंगे इलेक्ट्रॉनिक है, अगर उनको लेना हो तो एक साथ थोड़ी ले सकते हैं, कितना आसान हो जाए किश्तों में चीजों को ला।
1: लेकिन आपको अपनी आमदनी को देखते हुए अपनी किश्त बनानी होगी ना। आपने कहा घर लेना है तो घर इतनी बड़ी कहते हैं कि रकम वाली चीज होती है जिसे एक मुश्त लेना बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं है। तो आप ये देखिए कि अब जरूरी नहीं है आपको बहुत बड़ा बंगला बहुत बड़ा घर लेना है, अपनी जरूरत के मुताबिक आप कितने सदस्य हैं घर या आपकी आमदनी कितनी इसको देख समझते हुए आप अपने बजट में घर लीजिए और फिर जो किश्त बनानी है

0: अभी इतनी बनाइए, मान लीजिए अगर आप अभी आप एक किराए के में रहते हैं
1: जी,
0: तो जितना किराया अभी आप दे रहे हैं उतना देने की क्योंकि आपको बरसों से आ रहे तो उतनी आप आने से निकाल कर दे पाए, लेकिन उससे दुगना रकम अगर आपके पास आ गया देने के लिए तो कहीं ना कहीं वो मुश्किल का सबब जाएगा।
1: ये बात तो सही, लेकिन ये भी लगा है कि अगर कोई जरूरी चीज है जैसे आजकल लैपटॉप है या ये कहें कि ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, इनको लेना कितना आसान हो जाता है, हम एक साथ नगद नहीं हो हमारे पास, अगर जैसे इन दिनों बहुत गर्मी चल रही है अब हमें लगता है कि नहीं भाई फ्रिज हो जाए एक छोटा ही ले लें, नगद नहीं है तो किस्त में हम ले ही पाते हैं ना।
0: मैंने फिर ही कहूंगी किश्त अगर आपको लेनी है तो बहुत सारी किश्तें जबकि समय समय पर जाती है ना, तो आप या तो उन्हें क्लिक कर रखें, अगर आप भूल जाते हैं उन किश्तों के बारे में लिखना, अब मान हर हफ्ते की कोई ना कोई किश्त भरने का समय है, आपने कार भी ले रखी है, आपने बड़ा टीवी भी लिया, लैपटॉप भी लिया, मोबाइल भी लिया कोई अच्छा महंगा वाला, तो किश्त अगर आप भूल गए तो वसूली के लिए उनका जो रवैया होता है वसूली वाली कंपनी का वो आपके साथ बहुत सख्त होता है और फिर आपको ही बुरा लगेगा कि अरे ये हमारी वसूली मांगी जा रही है या इसके पीछे हमें जो भुगतान करना पड़ा है, जुर्माना भी हो सकता है सजा भी हो सकती है, उन चीजों से बचना है या तो समय पर किश्त देनी है उतनी आमदनी आपको
1: रखनी
0: या तो फिर किश्तों से ही बचना।
1: बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना लगता क्या है अरे सिर्फ 2,000 या 3,000 की किश्त है, तो हम वो जो 2,000 या 3,000 दिख रहा है ना मनी का उतना ही है, इसके पीछे जुड़ने वाला ब्याज हाँ। कहीं कोई ऐसी छिपे हुए शुल्क होते हैं ना जैसे 0% के नाम पर अब कई बार हो जाते हैं कि फाइल चार्ज हो जाता है, प्रोसेसिंग फीस बाद में जाती है, इंश्योरेंस नाम पर भी कई कुछ एक अमाउंट कुछ अधिक पैसा उसमें और जोड़ दिया जाता है, बाद में हमें समझ में आता है नहीं भाई 2 या 3,000 के नहीं जुड़ जुड़ क्या 5,000 तक,
0: और वो जो 20,000 की चीज आपको खरीदी थी वो आप 20 की जगह हो सकता है कि 30,000 या 35,000 तक की वो पड़ जाए, तो इसीलिए आप किश्तों में खरीदेगा जो एक कि वो लुभावना जो एक प्रलोभ होता है उससे बचने का प्रयास किए। और इसके बारे में हमारे साथी लिखते हैं कि किश्तों में खरीदारी अच्छी है क्योंकि आपने आपके पास ज्यादा रकम चुकाने की स्थिति नहीं है, तो अक्सर लोग किश्तों में खरीदने को अच्छा महसूस करें, ताकि ये नकद खरीदने से महंगा पड़ता है, लेकिन इस लोन के लिए सबके पास फ्लैट गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक आइटम आने से उपलब्ध होते जा रहे हैं, मासिक भुगतान का ये आइडिया ज्यादा लोगों को पसंद आता है। हाँ, आप हर महीने EMI दे सकते हैं तो वही से आप खरीदें, क्योंकि 2-3 किश्तों की लेट लतीफी फिर ब्याज बने की महंगी उसमें महंगी पड़ जाती है और अन्य कामों में उलझ जाते हैं, किश्त बाकी होने पर कंपनी वाले आते हैं और गाड़ी ढल ले आते हैं और पैसा भी डूब जाता है।
1: बिल्कुल ये सही, देखिए इन्होंने तो हमें बताया कि किश्तों के फायदे हैं नुकसान क्या है, लेकिन हमारे एक और साथी वो कहते हैं भाई किश्तों से खरीदारी के कई नुकसान, जैसे कहते हैं कि फिजूल खर्च को मौका मिल जाएगा, छिपे हुए शुल्क जैसे अभी ने बात करी हो सकता है, GST कहां लग सकता है हमें पता ही चलता, फिर भविष्य की जो एक आय है उस पे बोझ आता है, यानी कि हर महीने की कमाई का एक हिस्सा पहले से ही आप ब्लॉक कर देते क्योंकि हमें पता है ना कि ये इतनी किश्त तो हमें जानी है, फिर कर्ज जो एक डाल है एक साथ कई सारे EMI चालू हो जाएंगे, फिर देखिए आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है, डिफॉल्ट का भी खड़ा हो जाता है कई बार, किस्त बाउंस होने पर भारी पेनल्टी लगे चंचल और फिर क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है।
0: इसी तरह से हमारे एक साथी ने लिखा है कि किस्तों पर खरीदी करना सही है जब आपको बहुत ज्यादा वैसा लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि इससे आपकी आदत बिगड़ जाएंगी और आपको ये पता नहीं चलेगा कि कितना खर्च कर रहे हैं, इसलिए किश्त पर खरीदारी अभी करें जब क्रेडिट कार्ड खरीदारी करनी हो या अभी कभार पैसा करें तो इससे आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी, और मेरे हिस्से तो ये खरीदारी ना ही करें अच्छा है, ऐसा हमारे जो साथी हैं जिन्होंने संदेश लिखा है उनका कहना है।
1: अच्छा, एक हमारे साथी ने कहा है कि 10% का नियम आपको अगर आप EMI के पक्ष में है तो 10% का नियम अपनाना चाहिए, वो क्या है कि आप सभी EMI का कुल योग आपकी मासिक इनकम के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब जितना आपका है इनकम आपकी उसका 10% ही सिर्फ EMI में जाना चाहिए, सामान सस्ता लगने के कारण कई बार क्या होता है कि हम गैर जरूरी चीजें भी खरीद लेते हैं, तो इस नियम को अगर आप पालन करते रहेंगे ध्यान रखेंगे तो शायद हम बेफिजूल की चीजों से खरीदने से बच सकते हैं।
0: बहुत सही बात कही, लेकिन हम गाना सुनने से बिल्कुल नहीं बचेंगे, सुनवा दें।
1: बिल्कुल सुनवाइए।

0: देखो भाई, ये जो गाने हैं ना, ये कई बार मन को बड़ी शीतलता देते हैं, लेकिन वातावरण में जब हम बाहर निकलते हैं देखते हैं गर्मी बहुत है।
1: सही
0: और
1: बात है।
0: ऐसी गर्मी जो है ना, इसमें पसीने छूट जाते हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही कि अब कभी कभी ऐसा होता है, हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है भाई कब अपने स्टॉप पर आएंगे और वहां उतरेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा दुर्गंध आने लगती है कि सामने वाला भी शर्मिंदा तो हो रहा होता है, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए उतनी देर बैठना एक दुभर और कठिन काम हो जाता है।
0: बिल्कुल दीपा, और शरीर से निकलने वाली जो तीखी गंध है, ये शरीर की गंध, आम भाषा में लोग पसीने की बदबू के रूप में इसे जानते हैं। और बहुत से लोग शरीर की दुर्गंध की समस्या से प्रभावित भी होते हैं, और लोग अधिकतर यही सोचते हैं कि शरीर से बदबू या दुर्गंध पसीना उत्पन्न होने के कारण होती है। हालांकि इस बात में आधी सच्चाई तो है। और हमारे शरीर से बदबू आने का जो कारण है, शरीर की गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया है ना, उनकी मौजूदगी होती है।
1: बिल्कुल। और हमारे शरीर की त्वचा में रहने वाले जो बैक्टीरियाज हैं, वो पसीने में जो प्रोटीन और फैट होता है ना, उसे खाते हैं। शरीर के बाल वाले और नम हिस्से में लाखों जीव और बैक्टीरिया होते हैं जो पसीने के यौगिकों के बदबूदार को योगी उनको यौगिकों को बदबूदार गंध में बदल देते हैं। शरीर से दुर्गंध कई कारणों से भी आ सकती है, जैसे खराब

0: खान पान बढ़ती उम्र अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं और खराब साफ सफाई ये भी सब शामिल है और शरीर की दुर्गंध के आसान उपाय और आसान घरेलू नुस्खों से हम इसे दूर भी कर सकते हैं
1: तो उसके लिए सबसे अच्छा तो यही है कि जो सल्फर युक्त भोजन होता है वो आप थोड़ा सा कम करिए क्योंकि उससे भी पसीने में दुर्गंध आती है जैसे प्याज लहसुन ज्यादा सेवन अगर आप करते हैं या मांसाहार का सेवन अगर ज्यादा करते हैं तो उससे भी पसीने में दुर्गंध उत्पन्न होती है इसके अलावा आप ये हो सकता है कि शरीर को हमेशा स्वच्छ रखिए गर्मियों में नियमित रूप से दो बार स्नान करिए

0: ज्यादा करते हैं तो उससे भी पसीने में दुर्गंध उत्पन्न होती है। इसके अलावा आप ये हो सकता है कि शरीर को हमेशा स्वच्छ रखिए, गर्मियों में नियमित रूप से दो बार स्नान करिए, त्वचा पर पसीने को ज्यादा जमा ना होने दीजिए और सूती कपड़े पहने, ढीले ढाले आरामदायक कपड़े पहने, शरीर के जो अंतरंग हिस्से हैं उनकी साफ सफाई अच्छे तरह से रखिए, कॉफी या चाय इनका सेवन थोड़ा कम करिए, धूम्रपान का सेवन कम करिए क्योंकि ये भी शरीर की गंध को बढ़ाता है, और बिना धुले हुए कपड़े कभी ना पहने।
1: बिल्कुल, और यही सारी बातें हमारे एक श्रोता ने भी इसी तरह की बातें लिखी कि लिनन सूती ढीले कपड़े पहने ताकि त्वचा में हवा आती जाती रहे, नायलॉन या पॉलिस्टर जैसे कपड़े पसीने को सोख नहीं पाते इसलिए बदबू बढ़ाते हैं, और एक बार कपड़े जैसे अभी आप बताया कि एक बार कपड़े जो पहन लिए वो बगैर धोए उसे दोबारा ना पहने, और सारी बातें उन्होंने यही बताई है कि प्यास से युक्त भोजन का इस्तेमाल कम करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर के टॉक्सिक बाहर जाते हैं, शरीर ठंडा रहता है।
0: इसके अलावा अगर हम आसान घरेलू उपायों की बात करें तो सफेद सिरका है या टमाटर को मैश करके उसका रस निकाल लें, सफेद सिरके के रस को आपको अपने जहां जो प्रभावी हिस्सा है जहां दुर्गंध ज्यादा आती है पसीने में वहां रगड़कर धो लेना है, टमाटर है, इसी तरह से फिटकरी का जो पानी है वो भी पसीने की दुर्गंध को दूर करता है, नीम के पत्ते हैं उनसे आप स्नान कर सकते हैं, नीम के पत्तों को उबालकर नींबू का रस निचोड़कर इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर शलजम के जो टुकड़े हैं उनको कुचलकर उसके रस से भी दुर्गंध को दूर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और एक श्रोता ने लिखा है कि टी ट्री ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पानी में कुछ बूंदे डाल के नहाने से शरीर की दुर्गंध दूर होती है, साथ में उन्होंने कहा है नींबू का रस भी आप नहाने के पानी में थोड़ा सा रस मिला दीजिए और नींबू को आप रगड़ भी सकते हैं शरीर पे आप अंडर आर्म्स में ताकि जो जितने भी एसिडिक बैक्टीरिया मौजूद हैं वो सब खत्म हो जाएंगे।
0: नींबू को इस्तेमाल करने के बाद उसका बचा हुआ छिलका है उसका भी उपयोग किया जा सकता है, और अब चलते चलते एक गाना सुन लें।
1: चलिए।

0: कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं सखी सहेलियों से इजाजत। सभी को चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतता है अनुश्री पाठक।
1: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार, आप चहेते फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश के साथ हाजिर हूँ मैं शिफाली कपूर। साथियों, जिंदगी भाग दौड़ में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जो सिर्फ हमारे दिल के लिए हों, और उन्हीं खूबसूरत पलों को सजाने के लिए हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जहां फोन के जरिए आपसे होगी बातचीत और साथ होंगे आपके पसंदीदा गाने। साथियों, कुछ गीत मुस्कान बन जाते हैं, कुछ धुनें यादों का कारवां ले आती हैं, और कुछ फरमाइशें दिल से सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बातों और गीतों का सिलसिला, लेते हैं पहला कॉल। सुन रहे हैं ना, फोन की घंटी बज रही है, कहीं ये आपका ही कॉल तो नहीं? हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते जी, नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: मैं खुश नसीब हूँ, मुझको किसी का प्यार मिला।
0: आहा, क्या बात है, अपना नाम तो बताएं।
1: प्यार का ही एक पर्यायवाची शब्द है प्रेम। मैं प्रेम कुमार गौतम बोल रहा हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: मेरा नाम ये है मोहब्बत प्यार प्रेम।
0: वैसे कहते तो, हैं ना कि प्यार बांटते चलो, प्यार जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता है ना?
1: जी, तो मेरे आगे दो शब्द लगे हैं, तो प्रेम, दूसरा गौतम, और गौतम बुद्ध, दोनों ने ही प्रेम का संदेश दिया।
0: क्या बात है, तो आज आप क्या संदेश दे रहे हैं और किस शहर से बात कर रहे हैं, जरा ये भी बता दें।
1: मैं झांसी से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी।
1: पूर्व रानी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
0: बिल्कुल।
1: और गर्व करते हैं।
0: बिल्कुल गर्व है।
1: आपको भी गर्व होगा।
0: बिल्कुल गर्व है जी, बिल्कुल गर्व है। अपने बारे में भी कुछ बताएं प्रेम जी, आप क्या करते हैं?
1: मैं शब्दों की साधना करता हूँ, मैं राइटर हूँ, लिखता हूँ।
0: क्या बात है।
1: कविता से मेरे आत्मिक जुड़ाव है, मैं मूल रूप से कविता का विद्यार्थी हूँ।
0: अच्छा, कैसी कविताएं लिखते हैं आप?
1: छंद में तो मैंने बहुत कम लिखा, लेकिन हम मुक्त छंद की कविताएं लिखते हैं। हम मानवतावादी कविताएं हैं जो मुक्त छंद की हैं, हम मुक्त लिखते हैं।
0: अच्छा, तो चार लाइनें आप क्या हमारे श्रोताओं के लिए यहाँ पर सुना सकते हैं?
1: जी जी, जरूर सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है 2 मिनट का मौन है।

0: आओ मित्र दो मिनट का मौन रखें, आओ मित्र दो मिनट का मौन रखें, वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला, वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला, प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा, प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा, आओ मित्र दो मिनट का मौन रखें।
1: क्या बात है, क्या बात है भाई आपकी, तो इस कविता ने निशब्द कर दिया, तारीफ में क्या बोलूं मैं, और बहुत खूब आपकी कलम यूं ही चलती रहे और दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की करें। प्रेम जी तो बताएं आज के इस कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत आपकी पसंद का सुनवा दिया जाए।
0: एक बहुत फिलोसफी का गीत है, तीसरी कसम का, और बहुत भोले भाले राज कपूर पर फिल्माया गया, मुकेश ने गाया, शैलेन ने लिखा। सजन से झूठ मत बोलो ताके पास जाना, आप इजाजत दे तो मैं गुनाऊं।
1: चलिए गुनगुना दीजिए जरा।
0: सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है, सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम तो बताएं।
1: जी मैं तकिया मरिया हूँ, जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से मैं जमील अहमद शाह बोल रहा हूँ।
0: जमील भाई नमस्कार।
1: जी नमस्कार मैम, नमस्कार। और मैम क्या हाल चाल है?
0: बस सब मेहरबानी।

0: ऊपर वाले की और आप सभी की शुभकामनाएं हैं, वो विविध भारती परिवार के साथ तो हमेशा है ही, तो हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं।
1: बहुत आज खुशकिस्मती है मेरी कि आज मुझसे शिफाली कपूर जी से मेरी बात हो रही है।
0: जमील भाई, खुशकिस्मती तो हमारी है जो आप सभी श्रोताओं से बात करने का मौका मिला हमें। जी
1: 2019 में मेरा कॉल लगा था, अब जाके मेरा कॉल लगा है मैम।
0: अरे वाह, बड़ा लंबा अरसा हो गया। अच्छा ये बताएं जमील भाई कि इतना लंबा अरसा 2019 से आज है 2020, तो इतना जो दरमियान जो वक्त रहा, तो उसमें आपने ट्राई किया होगा फोन बीच में, अभी जब शुरू हुआ है ये हेलो फरमाइश, तो निराश तो नहीं हुए ना?
1: निराशा हुआ है मैम, बहुत अच्छा। दिल से मैं ट्राई कर रहा था, आज जाके कामयाबी मिली है तो बहुत खुशी मिल रही है।
0: आपकी खुशी हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद को आपकी जगह रखकर महसूस करती हूँ भाई कि कितनी खुशी होती। तो बताएं जरा जौनपुर के हालचाल बताएं, अपने हालचाल बताएं।
1: जी जौनपुर का हाल तो मैम बहुत गर्मी पड़ने लगी है मैम, और लगभग इस वक्त 37 डिग्री हम लोगों के यहाँ टेम्परेचर है मैम।
0: मुंबई भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर भी।
1: जी जी, और गाने पे आ जाते हैं मैम।
0: आ जाइए गाने पे, बिल्कुल अपनी पसंद बताएं।
1: टीम का नाम है महबूब की मेहदी और आवाज मोहम्मद रफी साहब की, और इसको मैम थोड़ा सा गुनगुना देना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल गुनगुनाइए।
1: ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, ओ ये जो चिलमन है दुश्मन।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते जी, नमस्ते। विविध भारती के कार्यक्रम हेलो फरमाइश में किसने फोन किया, कहाँ से फोन किया?
1: जी नमस्कार मैम, मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से फोन किया है। मैं विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: विश्वजीत जी, अपने बारे में तो कुछ बताइए।
1: मैं ब्लाइंड हूँ तो इसीलिए रेडियो कार्यक्रम सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद है विश्वजीत जी?
1: हेलो परमेश छाया गीत, और बहुत ही प्रोग्राम आपका है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप ये बताइए कि आप मोबाइल ऐप पे सुनते हैं या ट्रांजिस्टर रखा हुआ है आपने?
1: नहीं नहीं, ट्रांजिस्टर रखा हुआ है तो ट्रांजिस्टर में बहुत अच्छा से सुन लेता हूँ, आवाज का बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा ये बताएं कि आप करते क्या हैं?
1: मैं ब्लाइंड आदमी हूँ, खेती बाड़ी में काम करता हूँ। मेरा घर के आसपास से थोड़ा सा खेती बाड़ी में काम कर लेता हूँ।
0: अच्छा अच्छा।
1: मेरा माँ है, पापा है तो उसके साथ जाता हूँ खेत में, तो थोड़ा सा देखभाल करती है तो इसीलिए थोड़ा सा खेती बाड़ी में कुछ कुछ काम मैंने कर लेता हूँ।
0: और गीत संगीत से लगाव है आपका?
1: हाँ, तो गीत तो जब भी कार्यक्रम सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा इधर मौसम बहुत बारिश हो रही है, ज्यादा तो गर्मी थी तो इसीलिए बारिश हुआ है तो बहुत अच्छा है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, तो हमारा इधर एक मंदिर है, विख्यात तो मंदिर है, माँ त्रिपुरेश्वरी मंदिर।
0: अच्छा।
1: तो ये से बहुत ही लोग आती है वो घूमने के लिए, बाहर से डिगी है और डिगी का आसपास से बहुत ही सुनसान है, बहुत अच्छा लगती है वो डिगी के बारे में।
0: तो वहाँ पर आने का कोई खास मौसम होता है या किसी खास महीने में आया जाता है घूमने के लिए, या 12 महीने में किसी भी समय आ सकते हैं?
1: किसी भी समय में आप, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा इधर तो हर मौसम में बहुत अच्छा है।
0: अच्छा ये बताएं कि आज आपने हेलो फरमाइश कार्यक्रम में फोन किया है तो कोई गाना भी तो चुना होगा अपनी पसंद का?
1: जी जी, मेरे को गाना सुना दीजिए, साजन चले ससुराल मूवी से, तुम तो धोखेबाज हो वादा करके वादा निभाना चाहती है। हमारे इधर बांग्ला चलते है, बंगाली भाषा
0: जी,
1: तो बंगाली लोग रहती है तो कार्यक्रम हिंदी में होती है तो बहुत अच्छा, लोग जानती है हिंदी भाषा सीख जाती है
0: जी,
1: तो बहुत अच्छा लगती है आपका कार्यक्रम।
0: और विश्वजीत जी, आपने जितने मेहनत से हिंदी बोली है बहुत अच्छा लगा। और आपने जो ये बात कही कि आप विविध भारती सुनते हैं, हिंदी में कार्यक्रम आते हैं, उसके माध्यम से आप हिंदी सीख लेते हैं, तो ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा। और पूरी करते हैं आपकी पसंद, सुनिए ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: बहन जी, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, आप बताएं कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
1: जी मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजनर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से बात कर रहा हूं। बहन जी
0: बताएं जरा अपने बारे में।
1: एकदम अच्छे हैं और हम खेती करते हैं और अपना फूलों वाला काम डेकोरेशन का।
0: अच्छा, और वैसे खेत में आजकल क्या लगा हुआ है?
1: इस समय खेत में कुछ नहीं है, खेत तो खाली है। इस समय बस जुताई हो चुकी है, अब बारिश हो जाए और उसके बाद फिर मूंगफली की बुवाई होगी।
0: अरे वाह, अभी तो चटक गर्मी होगी।
1: जी जी,
0: तो खेत वेत में जाते हैं अभी कि नहीं जाते हैं?
1: जी जाते हैं, अभी क्या है ना, कुछ कटहल के और आम के पेड़ लगे हुए हैं।
0: अच्छा,
1: तो जाते रहते हैं, उसमें फल भी लगे हुए हैं।
0: कौन से फल लगाए हैं?
1: अभी आम है और कटहल है।
0: आम कौन सा है, आम की कौन सी जात?
1: दशहरी है, दशहरी।
0: क्या बात है भाई, अपने उत्तर प्रदेश की तरफ का जो दशहरी होता है उसका तो स्वाद ही अलग होता है।
1: बिल्कुल, सबसे नंबर एक का स्वाद होता है उसके।
0: और बताएं आपके जो शहर है वहाँ के क्या हाल चाल है और क्या इस प्रसिद्ध है? अगर हम आते हैं महोबा तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा?
1: हमारे यहाँ तो देखने के लिए जैसे काफी मंदिर भी है, जैसे झांसी हमारे पास है, झांसी रानी लक्ष्मी बाई का किला है और महोबा में किला बने हुए हैं राजाओं के, और हमारे बुंदेलखंड में जो चरखारी है वहाँ पे कई तालाब है और एक दूसरे से सभी तालाब ज्वाइंट है।
0: अच्छा,
1: वो भी बहुत जी देखने लायक है।
0: क्या बात है, तो यानी हमें एक बार महोबा आना ही पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल आना पड़ेगा आपको।
0: हाँ, लेकिन ऐसे सीजन में आना पड़ेगा जब हमें दशहरी आम मिले।
1: अभी 15-20 दिन बाद बस पकने ही वाले हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है, खूब आनंद लीजिए भाई, तो बहुत ही अच्छा फल है और इस तो आमों का राजा कहलाता है ये। बहरहाल चलिए, ये बता दीजिए कि आज आपका फोन लगा हेलो फरमाइश में, तो कौन सी पसंद है आपकी, गाना बताएं?
1: जी मुझे सुनना है, फिल्म का नाम है संगीत और गीत बोल है सुनो हसीना काजल वाली।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। अरे

0: हेलो फरमाइश।
1: शेफाली कपूर जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। मैं रेडियो दोस्त परवेज अहमद बनारस से आपसे मुखातिब हूँ मैम।
0: भाई बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत।
1: और मैं 2003 से रेडियो भी का सुनने वाला हूँ मैम। मैं घाट कोपर में रहता था तब से सुनता हूँ, लेकिन अभी आज मेरी बात हो रही, मैं बनारस से बात कर रहा हूँ आपसे।
0: तो ये बताएं कि मुंबई के घाट कोपर से बनारस कैसे पहुँच गए?
1: जी मैं वहाँ 5 साल हेयर कटिंग किया हूँ मैम, उसके बाद मैं फिर बनारस शिफ्ट गया हूँ। बनारस में ही यहाँ एक दुर्गा कुंड एरिया है, अस्सी घाट के बगल में, वहीं मैं रहता हूँ मैम।
0: अच्छा तो वहाँ क्या करते हैं?
1: यही अपना ही बिजनेस है, हेयर कटिंग का ही काम करता हूँ मैम।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, अपना सैलून है परवेज भाई का वाराणसी में?
1: जी 20 साल से ऊपर हो गया होगा, मेरी फोन आज लगी है।
0: क्या बात है भाई, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि ये आप सभी का अपना कार्यक्रम है हेलो फरमाइश।
1: रेडियो सुन सुन के मैं जो भी इतना जो भी बचपन से फिर रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है आप लोग की आवाज।
0: जो इस समय आपकी आवाज है और आपके अंदाज है ना, वो बता रहे हैं कि आप खुशी से लबरेज हैं इस समय विविध भारती के साथ। ऐसे ही जुड़े रहें और जरा ये बताएं कि बनारस की गलियों में वो जो आलू की सब्जी और कचौड़ी मिलती है उसका आनंद ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं?
1: जी मैम, फेमस है उस गली का नाम है कचौड़ी गली मैम, बहुत फेमस है वो रहता है। उस गली की खूबसूरती है कि अगर आप गली के अंदर जाएंगे इतनी अच्छी खुशबू आती है, हींग की खुशबू आती है, घी या देसी घी की खुशबू आती है कि एकदम खाने का मन तो हो ही जाता कोई भी रहे। यहाँ तक विदेशी पर्यटक भी वो स्वाद चखते हैं मैम। और एक नया घाट बना है हमारे यहाँ नमो घाट मैम, वो बहुत फेमस घाट हुआ है।
0: गंगा आरती तो बहुत ही बढ़िया होता है।
1: गंगा आरती मैम आप दशा समेव घाट पे देखिएगा, बहुत खूबसूरती होता है। और हमारे अस्सी घाट पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी अब गंगा आरती होने लगी है मैम, बहुत ही अच्छी होती है।
0: जी और उसका जो अक्स गंगा जी में पड़ता है वो तो अद्भुत होता है। चले परवेज भाई आपकी इस खुशी को हम दुगना कर देते हैं, अब बताए आपकी आपकी पसंद का गाना कौन सा है?
1: जी मैम फिल्म रहेगी लव इज शिमला मैम, गाने का बोल है अलीफ जवर आल अली जोर आल अली जोर ए अलीफ पे सो, ये मोहम्मद रफी जी की मीठी आवाज में है मैम गाना ये।
0: अच्छा सुने अपने तन का ये गाना।
2: अलीफ जबरा अलीफ जरे अलीफ पे सो अजी बे जबर बा बे जर बे बे पेश बो अलीफ से अबन अबिन बिहुर मन अबन अबौवा बे से बबन बबिन बिहुर मन बबन बबौवा अलिफ दबरा अलिफ दे रे अलिफ पेशो।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार शिफाली दीदी।
0: नमस्ते जी, नमस्ते। कौन बात कर रहा है हमसे?
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल डार।
0: ओ साहिल भाई, क्या हालचाल हैं?
1: ठीक हो आप? सुनाइए दीदी, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल ठीक हैं। आप सबकी शुभकामनाएं साथ में हैं। और अपने बारे में बताएं साहिल भाई।
1: जी मैं पश्मीना, जो कश्मीर आर्ट है ना, उसी के साथ करता हूँ दीदी।
0: शॉल वगैरह बनाते हैं?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा, तो ये सारा हाथ का काम होता होगा, हाथ से ही करते होंगे?
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपकी अपनी शॉप है या आप कहीं जाते हैं या घर से करते हैं ये काम, कैसे करते हैं?
1: मैं घर से ही करता हूँ दीदी ये काम, बनाते हैं तो फिर उसको खुद ही बेचते हैं।
0: अच्छा, कब से कर रहे हैं ये काम?
1: जी बिल्कुल, लगभग 2012 से।
0: तो काफी लंबे समय से जुड़े होंगे आप विविध भारती के साथ भी?
1: विविध भारती के साथ तो मैं जुड़ा हूँ, और आपको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने 2 मई से प्रोग्राम शुरू किया है मन चाहेगी।
0: जी जी जी जी,
1: और आपने कुछ प्रोग्रामों में चेंजेस भी लाए, तो बहुत अच्छी लग रही है आपकी चेंजेस।
0: अच्छा, तो आपको ये जो बदलाव हुए हैं ये पसंद आ रहे हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: और वैसे क्या आप हमारे सभी कार्यक्रम सुनते हैं या कुछ खास ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें आप बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनते हैं?
1: प्रोग्राम तो मैं सभी सुनता हूँ दीदी, आज के अफकार आता है, सुरीला सफर आता है, और छाया गीत, ये अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो आपके हमें मिलते हैं पिटारा, वो हमें सभी सुनने को मिलते हैं।
0: विविध भारती से जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उसमें आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है?
1: प्रोग्राम तो सभी अच्छे हैं।
0: और अब ये बताएं जरा कि आप श्रीनगर के इस समय हाल कैसे हैं, मौसम कैसा है?
1: तो इस वक्त मौसम बहुत ही अच्छा है, गर्मियां शुरू हो चुकी है, तो फिलहाल जो दिनों पहले यहां का जो तापमान था वो 31 भी हो गया।
0: अच्छा, तो आज साहिल भाई कौन सा गाना सुनवा दिया जाए आपको?
1: फिल्म का नाम है डोली, उसी का एक नगमा है आशा जी की आवाज में, आज मैं देखूं जिधर जिधर ना जाने क्यों उधर उधर।
0: भाई साहिल भाई, ये तो आपने मेरी पसंद चुरा ली। तो चलिए अपनी इस प्यारी सी बातचीत को यहीं रोक देते हैं और अब सुनते हैं आपकी पंत का, और हमारे तमाम श्रोता होंगे उनको भी ये गाना पसंद होगा, तो हम सब सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, जरा बताएं तो।
1: मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: प्रेम भाई क्या हाल चाल है?
1: मैं बहुत ही अच्छा हूँ। मैं सबसे बड़ा फैन आकाशवाणी विविध भारती का हूँ और उसमें से सबसे अच्छे मुझे कार्यक्रम लगते हैं। हेलो सहेली में आप आते हो, सखी सहेली में आप आते हो, हेलो फरमाइश में आप आते हो, तो चार चांद लग जाते हैं।
0: चलिए भाई, आपको विविध भारती के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आप विविध भारती से जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
1: मेरी आपसे बात हो रही है ना, तो यूँ समझिए कि मेरी धड़कन एकदम से तेज हो चुकी है।
0: भाई ऐसा क्यों?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि विविध भारती से कॉल लगना है ना, ऐसा होता है कि आपको मतलब सारी खुशियाँ मिल गई एक साथ में।
0: हम तो अपने सभी श्रोताओं के लिए हमेशा यही कामना करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी में तरक्की करते रहें। तो अब अपने बारे में बताएं प्रेम भाई, क्या करते हैं वहाँ पे?
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और मोबाइल ऐप पे आकाशवाणी विविध भारती और जितने भी प्रोग्राम आते हैं ना उनको सुनता हूँ मोबाइल ऐप पे। और अगर हम कहीं बाहर भी जाए ना फिर हमें मोबाइल ऐप पे आपके कार्यक्रम आसानी से सुनने को मिल जाते हैं। मैं बताऊँ आपको, विविध भारती के जो कार्यक्रम आते हैं ना उसमें से मुझे हेलो फरमाइश और हेलो सहेली के अलावा पिटारा के तहत में जो आता है तेले हेतनामा आता था, अभी सैटेलाइट के सितारे शुरू किए हैं और इस तरह के जो कार्यक्रम आते हैं ना बड़े अच्छे लगते हैं। और जब रात में हवा मेल आता है ना 8 बजे उसका तो हम सबसे बड़े।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, क्या बात है। आपने तो सभी कार्यक्रमों के नाम ले दिए क्योंकि सभी कार्यक्रम आपको पसंद हैं, यानी आप तो सुबह से शाम सुनते ही सुनते हैं विविध भारती। जरा ये बताइए कि इस समय जो आप हमें कॉल कर रहे हैं खेत से कर रहे हैं क्या?
1: इस समय तो हम घर पे ही हैं, अभी गर्मी का टाइम है ना तो खेत में अभी काम कुछ भी नहीं बचा है, बस फसल निकाल के घर ले आए हैं। खेत को कुछ समय के लिए खाली कर छोड़ दिया है, तब बरसात होगी ना तो सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी जुलाई में।
0: अच्छा तो जरा ये बताएंगे आज कौन सा गाना सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है अर्पण और गाने के बोले लिखने वाले ने लिख डाला मिलन के साथ जुदाई, लता मंगेशकर और सुरेश पाटकर की आवाज में ये गाना काफी अच्छा लगता है।
0: जी गाना है ही अच्छा, इसका गीत संगीत दोनों बहुत अच्छा है। सुनिए अब अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं बजनेरा जिला अमरावती विदर्भ महाराष्ट्र से इमरान श्रृंगारे बात कर रहा हूँ। दीदी आपका पुराना श्रोता
0: हिम्मत भाई, नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। अब आप अपने बताएं, क्या हाल चाल है आपके?
1: मैं अच्छा हूँ दीदी।
0: क्या चल रहा है आजकल?
1: आजकल कुछ नहीं दीदी, काम पर था, काम पर से अभी फोन लगाया मैंने।
0: अच्छा, तो आप बताएं वहाँ पर क्या काम करते हैं अमरावती में?
1: मैं मजदूरी का काम करता हूँ दीदी।
0: अच्छा, तो इस समय छुट्टी लेकर आए हैं फोन लगाने के लिए? चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने छुट्टी ली तो वो छुट्टी जो है हो गया कि आपका काम बन गया उस छुट्टी में।
1: आपकी आवाज़ सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे सेपन दीदी हमारे आमने सामने बैठी है रेडियो के।
0: देखिए रेडियो ऐसा माध्यम है हिम्मत भाई कि ऐसा लगता है कि हम सब आमने सामने बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और बताएं अमरावती के क्या हालचाल है? खूब गर्मी पड़ रही है?
1: अमरावती विदर्भ में बहुत गर्मी दीदी, इधर पारा बहुत गर्म है दीदी, 70 डिग्री सेल्सियस है दीदी, 47 है।
0: तो ये बताइए गर्मी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं?
1: मैं तो दीदी छतरी लेके जाता हूँ साइड पर, कान को बांधता हूँ कपड़े और ठंडा पानी पीता हूँ और समय पर भोजन करता हूँ दीदी और शाम में 5 बजे घर पे आता हूँ।
0: आप जरा बताएं आज कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: पूरी जब जब जुल्फे तेरी और आशा भोसले यानी मोहम्मद रफी साहब के आज में गाना है दीदी।
0: तो चलिए अब पहुंच रहा है अमरावती में आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश,
1: आप में रहने वालों को याद नहीं करते, दिल में रहने वालों की नहीं करे, आप तो हमारे रूम में बसे हैं, इसलिए मुलाकात की फरियाद नहीं करते।
0: अरे वाह भाई वाह, ये कौन शायर आए हैं, वे जरा बताएं अपना नाम तो बताएं।
1: उदयपुर राजस्थान झीलों की नगरी से दिलीप आहूजा बात कर रहा हूँ।
0: दिलीप आहूजा जी ने उदयपुर से झीलों की नगरी से हमें फोन किया है। गर्मी क्या हाल चाल है उदयपुर में?
1: गर्मी तो 30-42 आस पास चल रही है।
0: ऐसे में आपका काम काज सा चल रहा है?
1: थोड़ा ठंडा।
0: गर्मी के मौसम में काम काज बहुत एफर्ट करता होगा, क्योंकि इतनी तेज गर्मी पड़ी है कि लोग घर से बाहर निकलते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो आपका किस चीज का काम है?
1: वैसा ही है, मतलब सिलाई का।
0: अपनी शॉप है?
1: कोट वगैरह जी, भैया की शॉप है।
0: वाह क्या बात है। आप जेंट्स टेलर हैं और या लेडीज टेलर हैं या दोनों? लेडीज
1: जेंट्स।
0: अच्छा, तो गर्मी का मौसम है तो कामकाज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपका? आपको जल्दी जल्दी देना पड़ता होगा, तो उसके लिए कारीगर ज्यादा लगाने पड़ते होंगे।
1: कार्य तो ज्यादा ही है मैम, उनकी कृपा से, और उनको टाइम पे भी मिलते हैं।
0: क्या बात है?
1: बात थोड़ी सी शायद कम है।
0: अच्छा,
1: इसी से थोड़ा फर्क है।
0: अच्छा,
1: मृतकों की भारी धूम मची हुई स्थान के अंदर।
0: हम इसी पॉइंट आने वाले, वही बात आपने दी कि भाई उदयपुर और राजस्थान में पर्यटक के क्या हाल है, भाई गर्मी में भी पर्यटक है या नहीं है?
1: जी बिल्कुल है मैडम, 12 महीने उदयपुर के अंदर पर्यटक मिलेंगे ही मिलेंगे।
0: जी जी जी,
1: चाहे गर्मी कितनी हो।
0: ये बताएं कि उदयपुर में और चीजें ऐसी क्या हैं जो देखी जाती हैं झील के अलावा?
1: झीलों के अलावा तो एक मानसून पैलेस है और बहुत अच्छा है। थोड़ा सा ही आगे कुंभलगढ़ है और 40-45 किलोमीटर की दूर पर नासिक बना श्रीनाथ जी का शानदार मंदिर है।
0: जी जी,
1: उसके बीच में एकलिंगपुरा जी का एकलिंगपुर मतलब एकलिंगगढ़ के नाम से महादेव का मंदिर है, और अभी पिछले 3-4 वर्षों में नया एक वैष्णो देवी माता का मंदिर है। उदयपुर में ही हमारे सिख समाज के द्वारा ही बनाया गया है, निर्मित किया गया है।
0: अच्छा,
1: सेम टू सेम जैसा वैष्णो देवी में बना हुआ है, जोत भी वही वैष्णो देवी माता से ही आई थी और लंगर 2 महीने चालू होता है।
0: अच्छा, अब ये बताएं कि हमें इंतजार है इस बात का कि आप बताएं अपने पसंद का फिल्मी गाना आज कार्यक्रम के लिए।
1: रफी साहब का गाना याद आ रहा है मुझे, मूवी तेरी गलियों में नाचेंगे एकदम।

0: हेलो फरमाइश
1: शेफाली बहन को नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। और
1: आज हमने मन में इच्छा की शेफाली बहन से बात करेंगे तो बात पूरी हो गई।
0: क्या बात है, तुम जाने कौन भाई बात कर रहे हैं कैसे?
1: जी मैं आपका बड़ा उदयलाल टेलर उदयपुर बात कर रहा हूँ।
0: अरे वाह, जरा हाल चाल तो बताएं अपने।
1: हाल चाल मस्त है, गर्मी 24 डिग्री चल रही है और राजस्थान में गर्मी बहुत होती है।
0: जी राजस्थान गर्मी तो फेमस है। उदय भाई वहाँ पर काम काज है?
1: हमारा टेलर का काम है, डेंस कपड़ों के लिए करते हैं।
0: क्या बात है भाई।
1: मैं 55 साल से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ और अभी मेरी उम्र है 24 साल।
0: क्या बात है, 55 साल आप विद्यार्थी के साथ जुड़े हैं।
1: जी
0: आपने इन 55 सालों में बहुत बदलाव देखे हैं विविध भारती।
1: मैंने सबसे पहले तो वाले रेडियो से थे, उसके बाद चार सेल वाले मिनिस्टर आए, फिर 2 सेल वाले थे
0: जी,
1: और अभी तो मोबाइल ऐप पर में
0: सबसे
1: परिवर्तन हुआ है।
0: अच्छा ये बताएं कि सबसे ज्यादा आनंद कहाँ सुनने में, क्या सुनने में आया? मोबाइल पर अब आप ज्यादा अपने को सहज महसूस कर पाते हैं या पहले जमाने में जैसे सुनते थे उसमें अपने को सहज महसूस करते?
1: नहीं, रेडियो पर जो आनंद आता था वो मोबाइल नहीं आता है।
0: ये बात बिल्कुल आपने सही कही।
1: समय तो, उसके 5 मिनट देते हम वो ट्यून लगाते कोशिश करते
0: कह रहे हैं।

0: जी जी जी तो अभी भी रियो अपने पास रखा है नहीं रखा है?
1: नहीं रखा है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आज बंद है।
0: हाँ तो ये पुरानी यादें हैं जो हमेशा साथ रहती हैं। तो अब ये बता, दिल खुश होने वाला कौन सा गाना है जो आपने हेलो फरमाई के लिए आज पसंद किया है?
1: फिल्म वो कौन थी का काल जी गाना है, लता जी की आवाज में, राजा मेहंदी अली खान साहब की शब्द है
0: जी,
1: मदन मोहन जी की मधुर धुन है
0: जी,
1: लग जा गले सी रात फिर हो।
0: कालजयी गाना है, इसका कोई बदरी नहीं, अद्भुत गायकी, अद्भुत संगीत और कमा के बोल इसके। अब सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हाँ तो साथियों, घड़ी की सुइयों ने कर दिया इशारा कि आज के लिए बस इतना ही। आपकी बातचीत और आपकी फरमाइशें हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हम सिर्फ गाने नहीं सुन रहे हैं, दिल को जोड़ रहे हैं। साथियों, जिंदगी चाहे जितनी रिस्क क्यों ना जाए, अच्छा गीत हमें हमेशा कुछ पल ठहरना सिखा देते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि फोन पर हमारी अगली मुलाकात होगी अगले सप्ताह सोमवार को सुबह 11 बजे से विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से। हम रिकॉर्ड करेंगे फोन पर आपसे की गई बातचीत। तो हमारे टेलीफोन नंबर्स फटाफट नोट कर लीजिए। हमारे नंबर है 4002466 2, नंबर एक बार फिर 4002466 2, मुंबई का स्टडी कोड है 02022। चलिए अब हमारा दूसरा नंबर नोट लीजिए 2867028286702888। और हाँ, उन श्रोताओं से विनम्र निवेदन, जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए, वे कृपया 2 माह के बाद ही हमें कॉल करें कि अन्य श्रोताओं को भी उनके पसंदीदा कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिल सके। चलते चलते आप ये भी बता दें, आज के कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पार्टी, संपन्न सहयोग सुशीला वेंगलेकर का, विविध भारती की ओर से सुंदर सजीले कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। साथियों, रिश्ते सिर्फ मुलाकातों से नहीं एहसासों से भी बनते हैं। तो हम फिर मिले इसने और अपने के साथ। शिफाली पूर को दीजिए इज्जत। आप मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुली धड़कन।
1: हेलो, फरमाइश।

इस अंतराल पर आप सभी का से स्वागत है। कभी कोई इंसान एक पल को सब कुछ लगने लगता है और फिर जैसे सब कुछ खत्म हो जाता है, वो बात जो शुरू होनी थी शुरू ही नहीं हो पाती, वो बात जो हम कहना चाहते थे कह नहीं पाते। आह, कैसा दर्द हुआ है ये। और हम अब चुपचाप भारी कदमों से लौट आए हैं फिर से उसी रंगहीन दुनिया में। दस्तक मैंने खुला नहीं दरवाजा, खटखटाया बार बार, दीवार थी वहां, हाँ दरवाजे में।

एक सुकून भरे रिश्ते की तलाश सभी को हो है, है आपको भी है ना? पर कहाँ मिलता है वो रिश्ता? हरे को शब्द चाहिए थे मुझे, प्यार भरे शब्द कहीं

ही कुछ शब्द मिले भी, अफसोस उनमें अर्थ नहीं था, भाव नहीं था, एहसास नहीं था। ऐसे शब्द का क्या करते?

कभी भी आपको औंध कर भी घुस जाते हैं कुछ लोग और आप दबे कुचले से उस नुकीली चुन को सहते ले जाते हैं, सहते चले जाते हैं। तब लगता है जैसे हर लम्हा ढल रही हूँ मैं, रात बनर उतर रही हूँ मैं, जिंदगी जी रही हूँ या जिंदगी को कुतर रही हूँ मैं। हो सके तो मुझे इकट्ठा कर, हो सके तो मुझे इकट्ठा कर, लफ्ज बनकर पिघल रही हूँ मैं, लफ्ज बनकर पिघल रही हूँ मैं।

ये है विविध भारती, भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम नए पुराने लेकर हम थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

0: वाणी हा कार्यक्रम श्रोते हो आपण ऐकला आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मा वाहिनीवरून तसंच AIR मराठी या DTH उपग्रह वाहिनीवरून श्रोते आमचे कार्यक्रम आपण ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर ऐकू शकता.
1: मन की बात है जन जन की सबकी कुछ अपनी थी संघर्षों के किस्से कहानी कुछ सफलताओं की नई विरासत की उम्मीदें नए भारत की मई के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और सारभार के ऐप न्यूज एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव पर सज प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी. तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात.
2: श्रोते हो जागतिक कुटुंब दिनानिमित्त संवाद साधूया डोंबिवली महामहांगाच्या संस्थापक अध्यक्षा CA जयश्री कर्वे यांच्याशी. शुक्रवार दिनांक 15 मे जी सकाळी 11 वाजता आपले FM गोल्ड
0: मध्यम लहरी 557.6 MHz किलो हर्ट्सवर श्रोते होणे ऐकत आहात आकाशवाणी मुंबई केंद्राची स्मिता वाहिनी. आम्ही कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR आणि AIR मराठी DTH उपग्रह वाहिनी यावर ऐकू शकता. सकाळचे ठीक 6 वाजता आपण ऐकू काल हिंदी समाचार दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होतील. 5 मिनिटांनी इंग्रजीतील बातम्या आपण ऐकू शकाल. या हे दोन्ही बातमीपत्र दिल्ली केंद्रावर प्रसारित होईल ते आम्ही सहक्षेप करू. सुरुवातीला ठीक 6 वाजता हिंदीतील बातम्या आणि 5:15

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अक्षता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग रहे विदेश मंत्री से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हर एक किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं है, सब जगह नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआई अभियान तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल है। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार और प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरू में खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। ब्रिटेन ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट पर एक जहाज को जब्त किया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू के पास फुजैराह बंदरगाह के करीब इस जहाज पर अनाधिकृत कर्मियों ने कब्जा कर लिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री युवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रियों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने किसानों को उर्वरक के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए गाँव में अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से करेंगे। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु

बॉम्बे गोवा से ये गीत बपीर की आवाज में आपने अभी सुना और आपको सुनाने जा रहे हैं अगला गीत पिया का घर फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में आनंद जी के बोल और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यालाल ने।

0: पिया का घर इस फिल्म दे अभी आप गीत रहे थे किशोर कुमार की आवाज में।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर की वो एक लड़कपन दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश शेट्टी
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जॉब जिसने मुझे इतने चढ़न से इन लोगों को पढ़ने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी इस परिंदे उड़ान बाकी और जगजीत म्यूजिक के साथ हो गए कि किसी शायर के साथ हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने कितनी

विविध भारती पर इस वक्त आप सुने हैं कार्यक्रम तरानी नई पुरानी। अब ये गीत आपको हम सुनवाने जा रहे हैं, मनोज मुंशी की रचना है, मीट ब्रदर्स जान का गीत, कुणाल गांजल, श्रेया घोषाल और डोमिनिक सरेजो की आवाजें हैं। फिल्म का नाम इसी लाइफ में।

इसी लाइफ में इससे अभी आप गीत सुना, आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम की आखिरी पेशकश दिल एक मंद फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर की है, असरत जयपुरी के बोल हैं, बनाई है शंकर जयकिशन ने।

दिल एक मंदिर, इस फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत अभी आपने सुना। सेट जयपुरी के बुधे और बनाई थी शंकर जयशन ने। श्रोताओं, आज निर्माता निर्देशक राजकुमार बरजातिया जी का जन्मदिन का अवसर था, तो उन्हें याद हमने आज इस कार्यक्रम के दौरान किया और उन्हीं की चुनिंदा फिल्म के गानों को आज कार्यक्रम पानी नई पुरानी में शामिल किया। इस गीत के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए श्रोताओं, अब वक्त है हमारे आज के और कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा से आपको अवगत कराने के लिए। ये सुनिए झरोखा। अब से छह देर में 6:35 पर आप सुनिए संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता श्रृंखला, ऐसी लागीगन कलाकार गायक अनूप जलरा, इस श्रृंखला का भाग तीसरा प्रदर्शित किया जाएगा। सात बजे कार्यक्रम जयमाला, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा इनसे मिले गिटार वादक अनीत गुंडार से जयंत पाटेकर की बातचीत का भाग उस प्रसारित होगा। 8 बजे हवा महल के अंतर्गत आप सुनेंगे नाटिका मंगल वरदान, लेखन कुंभी श्रीवास्तव का, निर्देशन पुरुषोत्तम दारवेकर। 8:15 कार्यक्रम चलोक 9 बजे आपके लिए, 9:30 पर सुनिएगा आज की फिकार कार्यक्रम जो केंद्रित रहेगा निर्माता देशक राजकुमार बड़जात्या पर। छाया गीत रात 10 बजे, 10:30 पर ढल जाए रात और रंग रंग का पुनः प्रसारण रात्रि 11 बजे। अब हमारे कल के कार्यक्रमों पर एक नजर डालते हैं। सुबह 8:05 पर वंदन, 6:30 पर बनिएगा श्री रामचरितमानस, इसका भाग 109 भी प्रसारित होगा। संगीत सदा 6:45 और पुनः 6:45 पर आप संगीत श्रृंखला ऐसी लगी लगन कलाकार गायक अनूप जलोटा भाग 4 इसका प्रसारित होगा। भूल बिस्तरे गीत कार्यक्रम सुनते हैं 7 बजे, 7:30 पर हम है राही बार के, 8:15 और पुनः दिन में 2 बजे आपनेंगे कार्यक्रम वंदे मातरम एक नए घोष, लेखक मिलिंद सबनिस, प्रस्तुत करता श्री पाठक। 8:30 पर कार्यक्रम चित्रलोक प्रद किया जाएगा। 9:30 पर सुबह और पुनः रात को 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकारों की कल केंद्रित रहा अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर सुनिएगा हेलो फरमाइश। रंग तरंग 11 बजे, 12:05 पर याद की महफिल कार्यक्रम और 1 बजे सूर्या सफर। सदाबहार नगमे 9:30 पर दिन में आप सुन पाए दिन 3 बजे हेलो सेली कार्यक्रम कब सुनेंगे। शाम 4 बजे टारा के अंतर्गत सुनिएगा गीतो भरी कहानी, भानी जीवन एक सरल रेखा, लेखिका श्वेता उपाध्याय, संपन्न सहायक काजल भतरगे। छाया गीत शाम 5 बजे, 5:30 पर कार्यक्रम दानी नई पानी, 6:30 पर संध्या रंजन, 7:45 पर इंद्रुष के अंतर्गत कल आप सुनेंगे गुलदस्ता, 8 बजे हवा महल के अंतर्गत हास्य नाटिका बुखार कल आप सुन पाएंगे, लेखन वीरेंद्र कश्यप का, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर का। 10 बजे, 10:30 ढलती जायत और 11 बजे पुनः रंग तरंग का प्रसारण किया जाएगा।

तो ये रूपरेखा हमारे आज के शेष रहे और कल के कार्यक्रमों की। आप सुन रहे थे झरोखा। लीजिए अब वक्त है कार्यक्रम संध्या रंज का। शंकर महादेवन की आवाज में गायत्री मंत्र।

अभी ये गीत आपने सुना शंकर महादेवन की आवाज में गायत्री मंत्र नीरव आपको सुनवा रहे हैं। सूर्य गायत्री आवाज में ये अगला गीत

0: संगीत रिता में भक्त भाव पर आरित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जानी मानी गायक श्री अनूप जोटा। इनसे बातचीत की ममता सिंह ने। सुनते हैं इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: सब श्रोताओं को नमस्कार और विविध भारत के स्टूडियो में एक बार फिर स्वागत कर रहे हैं अनूप जी आपका।
2: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: किला किला की उत धार गिरत भूमि लटपटा धाय मात गुद लेत दशत की रनिया ठुमक लत रामचंद्र बात पैजया श्री राम की महिमा गान संत तुलसीदास जैसा की है वैसा समता अन्यत्र दुर्लभ है और श्री अनूप जलोटा अपने कंठ से इन रचनाओं को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। अपने सुर से वे ऐसा चित्र खींचते हैं कि श्री राम बाल रूप में आंखों के सामने उपस्थित जाते हैं। अनूप जी हमें इस रचना के बारे में बताइए जिसका हमने जिक्र किया।
2: चरित रामचंद्र से पहले पंडित डी पलुस्कर ने गाया था और ऐसा आया था कि अब सब लोग उसे गाना चाहते हैं लेकिन वैसा कोई गा सकता कि उन्होंने जिस ढंग से गाया जिस प्रेम से गाया वो उनका एक काल था कोई कर सकता था। उसके बाद उस भजन को मेरे पिताजी ने बहुत गाया और बहुत प्रसिद्ध किया क्योंकि उन्होंने कुछ अपना रंग उसमें जोड़ा। उसके बाद लता मंगेशकर जी ने उसे रिकॉर्ड किया बहुत अच्छा गाया। मेरे पिताजी के साथ साथ मैंने भी गाना शुरू कर दिया था और मैंने भी कुछ अपने ढंग इसमें डाले हैं जिससे ये भजन औरों से बेहतर तो नहीं लगता लेकिन थोड़ा अलग जरूर लगता।

भगवान राम की वो आयु है, वो अवस्था है कि अभी चलना सीखे, चलने का प्रयास करते हैं, गिर जाते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं, कुछ खा देता है, फिर चल लेते हैं, फिर गिर जाते हैं। मेरा प्रयास है कि वो सुंदर दृश्य आपकी आंखों के सामने आ जाए।

0: गोस्वामी तुलदास जी, भगवान राम के सुंदर चेहरे तुलना किसी चीज से करना चाहते हैं। और कभी होता कह देता कि भगवान उनका चेहरा इतना सुंदर है जैसे सूर्य है, जैसे चंद्रमा है, या जैसे गुलाब फूल है, कमल का फूल है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को ब्रह्मांड में ऐसी कोई नजर नहीं आई योग्य हो कि उसकी तुलना भगवान राम के चेहरे से हो। बहुत सोचा और अंत में ये कह दिया कि भगवान राम का चेहरा इतना सुंदर है, इतना सुंदर भगवान राम चेहरा है।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर।

0: பார்த்து
1: बहुत सुंदर सचमुच। हम आंखें बंद कर बैठे थे और जिस तरह से आपने शब्द चित्र उकेरा आंखों के सामने उपस्थित हो गए थे श्री राम जी। अनूप जी, श्री राम जन आपने खूब गाए हैं और खूब श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है, लेकिन आपको व्यक्तिगत रूप से उनकी कौन सी महिमा गाने में ज्यादा आनंद आता है, उनके किस को आप ज्यादा गाना पसंद करते हैं?
2: भगवान राम के ऐसे भक्त हुए हैं जैसे शब्द हैं, जैसे केवट हैं। तो केवट का एक भजन है, मैं बताता हूँ, तो यदि आप अनुमति दें तो मैं वो भजन आपको
1: बहुत अच्छा लगेगा।
2: राग गुजरी तोड़ी के रंग को करी से कब्ज किया गया।

भगवान राम ने सोचा केवट का तो यही काम है, इसको मजदूरी देनी है। लेकिन केवट वो प्रभु एक ही काम करने वाले दो आदमी आपस में लेन देन नहीं करते। भगवान राम ने पूछा, जरा स्पष्ट करो, बात समझ नहीं आई। केवट बोला,

0: केवट की नौ चढ़े।
1: ऐसी लागी लगनी, आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा ममता सिंह बातचीत आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत शीश की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
2: विविध भारतीय संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतता मनीषा जैन।

0: श्रोते हो नमस्कार. आजच्या वृत्तविशेष मध्ये आपलं स्वागत. श्रोतो, भारत हा कृषी प्रधान देश आहे. देशाची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर कृषी आणि त्या संबंधित उद्योगांवर आधारित आहे. शेतकरी मोठ्या कष्टाने आपल्या शेतात धान्य पिकवतो, त्यासाठी त्याला मेहनतीबरोबरच आर्थिक गुंतवणूकही करावी लागत असते. त्याची भरपाई त्याच्या शेतमाला मिळणाऱ्या किमतीमधून होत असते. बाजारातल्या काही घटकामुळे काही वेळा शेतमालाला योग्य तो भाव मिळत नाही, परिणामी शेतकऱ्यांचं नुकसान होतं. ते टाळण्याकरता आणि शासन म्हणून शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहण्याच्या जबाबदारीतून केंद्र सरकार काही पिकांच्या खरेदीसाठी किमान आधारभूत किंमत ठरवत असतं. यंदाच्या खरीप हंगामातल्या अशा प्रकारच्या 14 पिकांना केंद्र सरकारनं किमान आधारभूत किंमत घोषित केली आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यात वाढ करण्यात आली आहे. श्रोते हो, काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या किमान आधारभूत किमतीची घोषणा करण्यात आली. यावेळी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विन वैष्णव यांनी माध्यमांना माहिती दिली. केंद्र शासनाची या किमतीविषयी भूमिका त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले,
1: प्रधानमंत्री ने जब से 2014 में जिम्मेदारी ली है देश की, तब से एक के बाद एक किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए हैं. और जो एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया था 2019 में, किसानों को अपने श्रम का उच्च मूल्य मिल सके और कम से कम 50% मुनाफा मिल सके किसान को, इसलिए उनके जो कीमत है, खेती जो कीमत आती है, जो कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट के ऊपर लागत जो आती है, उस लागत के ऊपर 50% का प्रॉफिट जोड़ के एमएसपी का निर्धारण करने का 2019 में फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था. उस फैसले के अनुसार लगातार खरीफ रबी हो, सारे फैसले उसी हिसाब लिए जा रहे हैं. कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट इक्वल्स एमएसपी, उस तरीके से इसका सा फैसला लिया गया. तो आज के खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें करीब जितने भी खरीफ के कब्जे हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक, टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले. और इस साल का एनुअल रीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मिलियन मेट्रिक टन. अगर कंपेयर के 2014-14 के कंपैरिजन से और 14-26 का जो किसानों को खरीफ में मिला है, मैं सिर्फ खरीफ का कंपैरिजन कर रहा हूँ, खरीफ अभी माइंड नहीं है, केवल खरीफ का कंपैरिजन है. 2014 के दशक में 4,75,000 करोड़ रुपए किसानों को मिले थे. 2014-16-26 वाला NDA 1, NDA 2, NDA 3, ये जो पेड़ है इसमें 19 लाख करोड़ रुपए किसानों को खरीफ में मिले. किसानों के जीवन में इसके कारण बड़ा परिवर्तन आया है. 4 गुना ज्यादा किसानों को ND1, ND2 और ND3 के दौरान दिया गया है. खरीफ का प्रोक्योरमेंट भी डबल हुआ है, जहां 4679 ये टोटल है, पीरियड का टोटल है, एक साल का नहीं, पूरे पीरियड का टोटल है. जहां करीब 4,600 लाख मिलियन टन होता, उसकी जगह 8,700 लाख मिलियन टन. ये सब फसलों की एक करके जो आज एमएस अप्रूव हुआ वो है, जो इसमें निर्णय लिया गया है उसमें हर जगह कॉस्ट प्लस 50% या 50% से अधिक का निर्णय लिया गया है. पैडी कॉमन 2,441 रुपए पर क्विंटल, पैडी ग्रेड ए धान पैडी 2,461 रुपए पर क्विंटल, ज्वार श्रेणी में आता है हाइब्रिड 4,023 रुपए पर क्विंटल, ज्वार मालदंडी 4,073 रुपीज पर क्विंटल, बाजरा 2,900 रुपए पर क्विंटल, रागी 5,205 रुपए पर क्विंटल, मेज 2,410 रुपीज पर क्विंटल, तूर 8,450 पर क्विंटल, मूंग की दाल 8,780 रुपीज पर क्विंटल, उड़द 1,200 रुपीज पर क्विंटल, कॉटन कपास मीडियम स्टेबल 8,267 रुपए पर क्विंटल, और कॉटन लॉन्ग स्टेबल 8,667, मूंगफली 7,517 रुपीज पर क्विंटल, सनफ्लावर सीड 8,343, सोयाबीन येलो 5,708 और सीसम 10,356 रुपीज पर क्विंटल, नाइजर सीड 10,052 रुपीज पर क्विंटल.
0: श्रोतो, खरीप हंगामासाठी घोषित होणारी आधारभूत किंमत, त्याचे निकष

0: कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग पहली वाली बात कहा।
1: परंतु सभी डाले
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है
0: बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहा है, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: मी का म्हणून राहिलो आता हे तर सप्पा माहिती माहिती झाली म्हणा
4: दिसतंय तुझ्या चेहऱ्यावर, तुला कंटाळा आलेला आहे म्हणून।
3: आता मग थोडस काहीतरी मनोरंजन पाहिजे।
4: शेतात आहोत आपण, शेताच्या कामाच्या गप्पा करत आहोत, तर शेतीशी संबंधित एक गाणं ऐकवते।

0: और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आपण ऐकत आहात आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी मध्यम लहरी 537.6 meters तसंच 558 kilohertz. श्रोतेहो, आमचे प्रसारण आपण AIR मराठी DTH उपग्रह वाहिनी आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर देखील ऐकू शकता आहात।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। आप सभी विविध अति सुनने वालों का स्वागत करती हूँ। मैं आज हूँ आपकी साथ पूजा नारानिया। आइए को सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म धड़कन से, कुमार सानू की आवाज में, समीर कली के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

0: जब तक किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तंग कर सामने खड़े हुए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर रविवार की शाम साबित होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने की जज्बे। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा। जैसे कि आप सुनते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों गुलदस्ता, और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाश रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक गीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताशी ऑडिटोरियम गुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब आपको सुनाते हैं कसूर फिल्म का गीत, उदित नारायण अलका याग का गाया, समीर लिखे बोल हैं, धुन बनाई है नदीम शंकर।

पुनीत नारायण और अलका याग्निक के गुल स्वरों में कसूर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। समीर ने गीत के बोल लिखे थे, धुन बनाई थी नदीम शर्मा ने।

और हम फिर से लौट आए हैं कार्यक्रम त्रिलोक लेकर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आइए अब आप सुनवाते हैं तरकीब फिल्म से जगजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाजों में दा फाजिला लिखा आदेश श्रीवास्तव का संगीत किया गीत।

आइए आपको सुनवाते हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल, मश्री, बेला शेंडे, कलापनी कोमाकली की आवाजों में पहेली फिल्म का गीत। संगीत किया है इस गीत को MM करीम ने।

पहली फिल्म का गीत सुन रहे थे आप सोनू निगम, श्रेया घोषाल, मधुरी, बिल शिंदे और कल्पनी कोमाकली की आवाजों में। अगला गीत गली में चांद निकला, जख्म फिल्म से अका याग्निक की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत MM करी का ही है। फिल्म का नाम जख्म।

जख्म फिल्म से अलका याग्निक का गाया गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल थे एम एम करीम का संगीत। और इसी के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न हो रहा है।

थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सचन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेकिंग में वार्ता। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को खुलने

0: बल दिया और गांधीनगर में एशियाई सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के देश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अब शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र है।
1: हमारे चाहों का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास निश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा सांझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत कर पर सी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के रवाना होंगे, जहां व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। यात्रा दो देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: भारत के यूको एक्सपोर्ट्स अब तक $6.63 बिलियन से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूएई से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गृह पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
3: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 394,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्कर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने वीडी सतीश को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को सीएम के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट। था समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अर्कर से मुलाकात कर उन्हें एपी वेलुड़ी के नेतृत्व वाले एआईएडीएमके विधायकों गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष जेसी प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। एसपी वेलुड़ी के नेतृत्व वाले

के 25 AIADM विधायकों ने OS मयन द्वारा जारी विधि अवहेलना करते हुए टीवी के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान निकले मित्र हम सब साथ निभाते निरोगी परिजन को पोषण जांच इलाज और जीविका संबंधी सहायता पहुंचाते जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार
1: निक्षय मित्र सभ्या एक बड़े चल से निपट में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है आपको जान हैरान होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं समाचार सहमी आप फिर स्वागत है सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं नई दिल्ली में पश्चिमी एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है
2: भारत सरकार ने कई इफेक्ट स्टेप्स लिए हैं जिसे चलते हमारे पास पेट्रोल डीजल एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेट चल रहे हैं
0: पत्तर पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़के आगने से कथित तौर पर डूब गया
3: एन इंडियन डो
4: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्र क्षेत्र में हमला हुआ से जहाज में आग लग गई और वो डूब गया जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक ने सुरक्षित बचा लिया भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है
3: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय पर 1 वर्ष तक सोया की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है
5: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी जारी करेगी कि जहां संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की कीमत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है
6: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे जिसमें हम सभी मंत्री हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी जहां संभव हो मेट्रो से ऑफ जाएंगे
5: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए शित कुमार बयान
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है

0: स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जनता कार्यक्रम से जुड़े कई सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जाती है।
1: अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि

0: ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मूज जल डमरू में खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने टकराव के बजाय सही को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
1: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।

0: भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमरीका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीके अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया है और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, दक्षिण उत्तरी कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय की तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजित नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड डर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पद हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और गिनेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों, 3 के शासित प्रदेशों में विशेष गृह पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरल में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेच में वार्ता और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संघ का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविधति राष्ट्रीय सेवा देश की सुरी धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम का पहला गीत नया राजा फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की, साहिल लुधियानवी का गीत एंड ताका संगीत।

0: छाया गीत हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्ण युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आत्मा में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

विभाती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। आरजी बर्मन के संगीत सजा ये गीत लिखा है गुलजार ने, आवाज लता मंगेशकर की है और फिल्म का नाम है गोलमाल।

फिल्म गोलमाल से लता मंगेशकर का गाया गीत आप सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में अगला गीत। इस गीत लिखा है सहर लुधियानवी ने, राजेश रोशन के संगीत से सजा फिल्म काला पत्थर का गीत।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लविश कुमार मार।
1: हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने कलाकार हैं, जितने हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम जवान पे क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर।
2: ये अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, किशोर कर और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म का नाम है घर, गुलजार की बोल आर डी बर्मन।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों ये गीत अभी आपने सुना। गुलजार का लिखा आजीवन का संगीत पद किया फिल्म घर से।
1: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारत हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भरती। इस बार सृजन भरती लिखा रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्त काशी रमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से जा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्त काशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवल पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सब खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
0: आश भोसले का गाया ये गीत सुनिए। शहरयार ने इसको लिखा। खय्याम का संगीत है। फिल्म का नाम उम्र हो जान।

0: उमराह जान फिल्म से गीत आपने अभी सुना, शहर यार का लिखा खयाम के इस गीत से सजा आशा भोसले की आवाज में।
1: एक बेमिसाल शायर।

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
2: रंग में कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था।
1: विविध भारत परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
2: वो मेरे पूरे पेयर का स्वर्णिम था, उस टीम का आदमी जिसने मुझे इतने चढ़े इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज मेहमान राजेश रेड्डी, 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विद्यभारती पर।

आइए अब आपको सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए की आखिरी प्रस्तुति, मजरू सुल्तानपुरी का गीत। इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। गीत है, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और मंगेशकर की।

शागिद फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी कला गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत से सजा और इसी के साथ कार्यक्रम आपके लिए यहीं संपन्न हो रहा है।

0: विविध मिति के पथे बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: चित्र उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
1: और जिसमें एक गैप लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमाह है, मरने का इरादा है, वो ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, गाते गाते आप इस बार से ज्यादा जब कर जाते। मैंने कहा गोल्डी ये ज्यादा थे भाई, मैं भा रही हूँ और जब कर रही हूँ गभी रही हूँ, मूड भी एक्सप्रेशन भी सही है, कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानी आपको मिलेगी सिर्फ विविध भारत पर। विविध प्रति आपका जीवन संगीत।

कुचामन सिटी राजस्थान के जिला मुख्यालय में 14 मई 1943 को प्रसिद्ध निर्माता ताराचंद बड़जात्या के यहाँ में राजकुमार बड़जात्या खनन इंजीनियरिंग पढ़ाई के लिए 1962 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में इन्होंने दाखिला लिया, लेकिन पिता के अनुरोध पर राजश्री प्रोडक्शंस में शामिल होने के लिए इन्होंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। राजश्री प्रोडक्शन एक फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी, इसकी स्थापना 1947 हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से हिंदी फिल्म शामिल रही हैं। राज प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्में मनोरंजन की मांग को हमेशा ही पूरी करती रही हैं। फिल्मों के वितरण प्रोडक्शंस के कार्यों को पूरा सफलतापूर्वक अंजाम देना राजकुमार बड़जात्या ने आरंभ किया था। एक माता के रूप में 1994 लेकर 2019 तक ये श्री रहे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में पिया घर से लेकर मैंने प्यार किया तक का सफर इन्होंने पूरा किया। सह निर्माता के रूप में 1979 फिल्म या से ये जुड़े।

राजकुमार बड़जात्या एक फिल्मकार के रूप प्रसिद्ध हैं। बड़जात्या परिवार का एक ऐसा सदस्य जिन्होंने फिल्म निर्माण और वितरण के अपने पारिवारिक व्यवसाय को बड़ी ही शिद्दत से निभाया। फिल्म निर्माण की अपनी विरासत में इन्होंने कई पारिवारिक लयों के साथ ली हुई लोकप्रिय संगीतमय कलात्मक फिल्मों का निर्माण किया। एक फिल्मकार की संपत्ति और समाज में मान मर्यादा उनकी फिल्म से ही पहचानी जाती है। राजकुमार बड़जात्या हिंदी सिनेमा जगत में बेहतरीन कथाओं, अभिनय, गीत संगीत के माध्यम से आम और खास दर्शकों को उनके पसंदीदा विश्व की सार्थक फिल्में देने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। राजकुमार बड़जात्या सबसे पहले 1972 की फिल्म पिया का घर से जुड़े। बासु चटर्जी की लिखी और निर्देशित इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था तारण बड़जात्या ने।

राज प्रोडक्शंस फिल्म सौदागर। इसके निर्देशक थे सुधींद्र रॉय, नूतन अमित बच्चन, पद्मा खन्ना अभिनीत। इस फिल्म के राजकुमार बड़जात्या सहयोगी निर्माता थे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने तपस्या फिल्म में काम किया, एक रोमांटिक ड्रामा। इस फिल्म का निर्देशन अनिल गांगुली ने किया और निर्माता थे ताचंद बड़जात्या। ये फिल्म अनुभवी बांग्ला उपन्यासकार आशा पुना देवी कहानी पर आधारित। फिल्म में राखी परीक्षित हानी ललिता पवार ने मुख्य भूमिकाएं अदा की थी। संग रविंद्र जैन का था। इस फिल्म ने 1976 वर्ष की संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही राखी। सन 1980 में इसी फिल्म को तेलुगु भाषा में भी बनाया गया। सन 1976 की चोर

1994 आई हम आपके हैं कौन THK या हम आपके हैं कौन राजकुमार बड़जतिया की एक निर्माता के रूप में आई संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म सेन के पुत्र सूरज बड़जतिया लिखा और निर्देशित किया और राष्ट्रीय प्रोडक्शन के बैनर पे इसका निर्माण किया गया। माधुरी दीक्षित और सलमान खान अभिनीत 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई यह फिल्म वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म ने वितरण के नए तरीकों को अख्तियार कर साफ सुथरी कहानी के साथ भारतीय फिल्म उद्योग को हिंसक कहानी ली हुई फिल्मों के बीच बदलाव का एक सुकून भरा एहसास दिया। इसके साथ निर्माण और वितरण का तरीका भी बदला। इस फिल्म ने राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म पुरस्कार और अन्य अवार्ड्स में इस फिल्म की धूम रही। पहला

एच ए एच के बाद 1999 में आई निर्माता राजकुमार जात्या की हम साथ साथ हैं, अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या अपने परिवार के सदस्यों साथ राजकुमार बड़जात्या ने इस फिल्म निर्माण किया। कहानी और निर्देशन सूरज बड़जात्या का था। यह भी उस वक्त की सबसे अधिक कमाई करने वाली और दर्शक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। समीक्षकों ने भी इसे खूब सराहा। ये फिल्म टोरंटो में 6 स्क्रीन पर कनाडा के सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म थी। वैसे ये फिल्म अपनी निर्धारित प्रदर्शित तिथि से पहले ही रिलीज हो जाती, पर संगीतकार राम लक्ष्मण ने साउंड एल्बम की जांच के लिए समय लिया। पोस्ट प्रोडक्शन, सिनेमेटोग्राफी, कोरियोग्राफी के साथ साथ सभी काम पूरे होने के बाद आखिरकार 5 नवंबर 1999 को स्क्रीन पर फिल्म आई और

2002 में फिल्म आई हम प्यार तुमसे कर बैठे। जुगल हनराज कीना राणा इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे। 2003 की फिल्म मैं प्रेम की वाणी हूँ जो चितचोर पर आधारित फिल्म थी और इस फिल्म के कलाकार थे ऋतिक रोशन, करीना कपूर, अभिषेक बच्चन। अश्री प्रोडक्शन की इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था यशराज फिल्म्स ने।

राजकुमार बड़जात द्वारा निर्मित सन 2006 में फिल्म आई विवाह, मुख्य किरदार थे शाहिद कपूर और अमृता राव। रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसमें सगाई से लेकर शादी तक के सफर की कहानी को बहुत भी दर्शित किया गया था।

एक विभाग एस की नाम की फिल्म लेकर आया राजकुमार बजात्या साल 2008 में। ये भूमिकाएं निभाई थी ईशा कोप्पिकर, सोनू सूद और आलोक नाथ ने। ये फिल्म अपूर्णा देवी की कहानी पर आधारित है।

हम राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं। 2010 में इन्होंने फिल्म बनाई इस लाइफ में, 2011 में लव यू मिस्टर कलाकार। फिल्में राजकुमार बड़जात्या की अन्य फिल्म की तरह लोकप्रिय नहीं हुई।

इसी क्रम में 2011 में सचिन गांवकर निर्देशन में राज फिल्म्स की प्रसिद्ध फिल्म अखियों के रुखों की सिलाई जाना पहचाना, जिसमें सचिन और रंजीता ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। फिल्म भी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिर 2015 में आई राजकुमार बड़जत्या द्वारा निर्मित फिल्म। ये फिल्म उस वर्ष की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म थी प्रेम रंधन।

सलमान खान, सोनम कपूर, नीलनित मुकेश अभिनीत ये फिल्म दर्शकों के मापदंड पर खरी उतरी। 2019 में निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या अपनी आखिरी फिल्म लेकर आए हम चार। अभिषेक दीक्षित खित और

0: लाचमार बरजात्या का 21 फरवरी 2019 को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। एक निर्माता के रूप में राजकुमार बरजात्या पारिवारिक फिल्मों की अपने परिवार की परंपरा का निर्वहन करते हुए भारतीय दर्शकों के लिए अपनी जमीन से जुड़ी हुई कहानियों को, भावनाओं को, रिश्तों को बड़े ही जन और प्यार से सिनेमा के पर्दे पर प्रदर्शित किया। इनकी फिल्में भारतीय सिनेमा इतिहास में बेहतरीन कथानकों और प्रस्तुतिकरण लिए हमेशा ही चिन्ही जाएंगी। जब भी दर्शन फिल्मों को देखेंगे, राजकुमार जी की कथा शैली निर्माण का के मुरीद हुए बिना नहीं रह सकेंगे। आज के फनकार ये कार्यक्रम केंद्रित था निर्माता राजकुमार बरजात्या पर। आलेख और स्वर बी श्याम और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी तेजश्री अम्बले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। बोलती है आप जीवन में शास्त्रीयता। विज्ञानों की श्रृंगार रूप का संगीता दौर ले कायम है संगीत की गुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 5:45 पर संगीत सरिता विद भारती पर।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा छाया गीत कार्यक्रम। आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

पेश खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। परिजात खुशबुओं से मुअत्तर ये हसीन रात, सह गुलशन में फूलों की हसीन साए, चांद सितारों की ये चिलमन, शोख नजारों की ये अंगड़ाइयां, तो धड़कन की जुबानी मोहब्बत की कहानी अजब समा दिखाती है, सजों बुझती नहीं ये शम्मा जले जाती है।

अब सुनाए जिंदगी सुनाए तो अच्छा, आईना ए आरज़ू दिखाए तो अच्छा, ये रात तन्हा न जाए तो अच्छा, मेरा मुकद्दर उनकी जुल्फों में सवर जाए तो अच्छा। क्या कहूँ हर एक नजर ये काम करती भी नहीं, हर एक निगाह दिल पे यूं उतरती भी नहीं।

नाशाद हैं जो शाद भी हो जाएंगे, एक हल्के से तबस्सुम दे आबाद भी हो जाएंगे। गुलशन में उनका आना कुछ ऐसा ही होता है, फूलों में खुशबू शाखों पे तराना होता है।

के आन से समा और भी पुनर होता गया, रात कटती गई, चांद और भी निखरता गया। क्या कहूँ, चलो उनसे ही पूछ लेती हूँ। ऐसी उलझन में कट न जाए ये तमाम रात, इश्क में दोनों तरफ कुछ ऐसा ही समा होता है। ये अफसाना मोहब्बत हर्फों में कब आया होता है।

धड़कनों की बताती है कि वो आए हैं। शाखिद की लक है या शानों पे जुल्फों की बिखरी है लटें, ये परेशानियां वो आंखों को झुकाने की अदा, अपने आप को खुद से ही छुपाने की अदा। यूं लगता है कि आज ये दिल संभल न पाएगा, शबनमी कतरों पे रात का नूर बरस ही जाएगा।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अपना दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो
0: नहीं।
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिदोड़ो ना।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। छह गीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

जैसे कि आप जानते हैं भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाश रंगमंच पर 21वीं शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: कार्यक्रम रंग तरंग लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा।
1: वाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश

0: किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, करकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers' meeting, which is being held in New Delhi. Earlier, in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers' meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Narendra Modi's Humanity First and People-Centric Vision for BRICS. In this session themed on BRICS at 20, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted that BRICS has expanded its agenda and membership in response to changing global realities while remaining focused on people-centric development and practical cooperation. The minister said BRICS is strong because it is independent and includes diverse countries. He said the group supports change and reforms, reflects a multipolar world, helps countries reduce the risks by expanding partnerships, and believes in mutual respect and equal rights for all nations. Prime Minister Narendra Modi will arrive in United Arab Emirates capital Abu Dhabi tomorrow on the first leg of his five-nation visit. He will later visit the Netherlands, Sweden, Norway and Italy. Our West Asia correspondent reports India and the UAE are preparing to further expand one of Asia's fastest growing economic partnerships during high-level discussions between Prime Minister Modi and President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The talks are expected to focus on trade, investment, energy security and emerging technologies. India-UAE trade crossed the $100 billion mark in the financial year 2020.